करते हैं, कम सोते हैं, कम व्यायाम करते हैं, कम वार्तालाप, परंतु अधिक चिंताएं करते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, अपना खर्च आदि। हम इसे बहुत इस जीवन की यात्रा में तीव्र गति से दौड़ लगा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये तीव्र जीवन शैली ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। यदि हम भाग्यशाली हैं तो हम किसी व्यायाम शाला के सदस्य बनकर योग अभ्यास करके या ध्यान योग का अभ्यास करके बेहतर स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं, परंतु हम में से बहुत से लोग थक हार कर टेलीविजन या फिर मोबाइल में बेहोशी में डूब जाते हैं। लेकिन श्रोता मित्रों, यहाँ हमारे पास ढेरों विकल्प है। जी हाँ, ताकत से भरा हुआ स्वस्थ एवं गुणकारी भोजन खाएं, परिवार एवं मित्रों के संग गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, स्वयं के संग कुछ समय व्यतीत करें, चाहे किसी बगीचे में निशब्द बैठकर या किसी खलियान में धूप और ताजी हवा का आनंद लेते हुए। हम मानव जंतु हैं, मानव मशीन नहीं जो कि निरंतर क्रिया करते रहें। जब हम सदा कार्य में व्यस्त होने की लत का त्याग कर दे, उपलब्धियों के पीछे दौड़ना छोड़ दे तथा सदा मसरूफ होना छोड़कर आराम से बैठकर सांस लेने का समय निकाले, तो हम पाएंगे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ होने का एक एवं संतुलित अवस्था को फिर पाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने अस्त व्यस्त जीवन से एक कदम पीछे हटकर अपने आप को अलग कर खुद को साक्षी होकर देखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होकर रह गई है। वो थोड़ा सा अंतराल या जी हाँ ब्रेक हमें किसी भी विषय वस्तु में फंसने और भाव प्रधान बनने से बचा सकता है। तो इस अवसर को जब्त करते हुए याद रखें कि अपने जीवन के आप ही कर्ता धरता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गई स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ बेहतरीन गाने।

सुबह के सताज की भरी जी हाँ, सुबह में आप आनंद ले रहे थे किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी द्वारा लिखे से खूबसूरत गीत का, जूली फिल्म से। जी हाँ, राजेश रोशन के बेहतरीन म्यूजिक के साथ। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं रुन एफ एम 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे का। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे सुबह सवेरे कार्यक्रम का आखिरी गीत। आपने सुना याराना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ ही सुबह सवेरे कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आपातानी श्रोताओं के पूरे कार्यक्रम को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, इस वक्त हमारी स्टडी की घड़ी में सुबह के 7:15 हो रहे हैं और इसी के साथ ही आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। जी हाँ, कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि सबसे पहले एक नजर डालते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित होने वाले द अरुणाचल टाइम्स समाचार पत्र की सुर्खियों पर। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ ने बुधवार को कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक कांड की निंदा की। गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हुए एपीसीसी ने मांग की कि परीक्षा तत्काल दोहराया जाए, यानी कि दोबारा आयोजित की जाए। एपीसीसी अध्यक्ष बोसिराम सिराम ने आरोप लगाया कि बार बार हुए नीट पेपर लीक ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही, विश्वसनीयता और ईमानदारी के भयावह पतन को एक बार फिर उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये महज नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि ये देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों के भविष्य आकांक्षाओं, कड़ी मेहनत और भावनात्मक कल्याण पर सीधा हमला है। इस खबर को प्रमुखता के साथ अपनी पहली खबर बनाते हुए दी अरुणाचल टाइम्स लिखता है, एपीसीसी आपसू कंडेम नीट पेपर लीक स्कैंडल, डिमांड मोर नीट सेंटर्स अक्रॉस अरुणाचल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने शासन को मजबूत करने, मानव संसाधन की कमी को दूर करने और सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से एक व्यापक जिलावार समीक्षा अभ्यास शुरू किया है। खांडू ने समीक्षा अभ्यास के पहले चरण की अध्यक्षता करने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये बयान दिया, जिसमें नवगठित जिले कामले, लोअर सियांग, पाके केसांग, लेपारादा, सियोमी, केई पान्योर और बिचोम शामिल थे। उन्होंने इस प्रक्रिया को एक मजबूत, अधिक उत्तरदायी और जन केंद्रित प्रशासन के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस पर द अरुणाचल टाइम्स की सुर्खी है, गवर्नमेंट लॉन्चेस डिस्ट्रिक्ट रिव्यू एक्सरसाइज टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम। पापुमपारे जिले से लगभग 1.2 करोड़ रुपए मूल्य के गेंडे के सिंह के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पापुमपारे के पुलिस अध्यक्ष तारू गुसार ने बताया कि वन्य जीव तस्करी के बारे में विश्वसनीय सूचनाओं के बाद 12 मई को असम के होलंगी और आसपास के इलाकों में ये अभियान चलाया गया। एसपी ने बताया, ऑपरेशन के दौरान एक गेंडे यानी कि राइनो का सिंह जब्त किया गया। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी ने खुलासा किया कि इस वस्तु की अनुमानित कीमत 1.2 करोड़ रुपए थी और इसकी तस्करी की जा रही थी। इस पर द अरुणाचल टाइम्स की सुर्खी है, राइनो हॉर्न वर्थ रूपीज 1.2 करोड़ सीज्ड फॉर अरेस्टेड। पूर्व सियांग जिला प्रशासन ने जनता को सलाह दी कि वे बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम कार्यों में शामिल ना करें और चेतावनी दी है कि बार बार अपराध करने वालों के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को जिला प्रशासन, श्रम और पुलिस विभागों ने बाल श्रम और जबरन श्रम पर अंकुश लगाने और प्रतिष्ठानों और कार्यस्थलों पर बाल अधिकारों और अनुचित श्रम प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रुकसिन सर्कल के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण किया गया। टीम ने बाल श्रम,
अधिनियम संविदा श्रम अधिनियम और अंतर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम तथा अन्य संबंधी कानूनों के तहत गहन निरीक्षण किया। इस पर दी अरुणाचल टाइम्स लिखता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू वार्न्स अगेंस्ट एम्प्लॉइंग चाइल्ड लेबर। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार इस वर्ष जनवरी से 13 मई के बीच अरुणाचल प्रदेश में तूफान, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और भारी बारिश जैसी मौसम संबंधी आपदाओं की एक श्रृंखला ने 32,800 से अधिक लोगों को प्रभावित किया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य भर से प्राप्त विभिन्न आपदा घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई और 8 अन्य घायल हो गए। मृतकों में भूस्खलन के कारण 4 मौतें, तूफान के कारण 2 मौतें और बिजली गिरने के कारण 1 मौत शामिल है। इस पर द अरुणाचल टाइम्स की सुर्खी है, डिजास्टर्स अफेक्ट ओवर 32,000 पीपल इन अरुणाचल फ्रॉम जनवरी टू मई। तो श्रोता मित्र, राजधानी ईटानगर से प्रकाशित होने वाले द अरुणाचल टाइम्स समाचार पत्र की सुर्खियों से आज बस इतना ही। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेंट में। तो अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से अमित त्रिवेदी और अन्य साथियों की आवाजों में ये बेहद ही खूबसूरत गीत। और इसी के साथ ही अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जज्बा फिल्म से।

मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे दुश्मन फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्रों, तागिन श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम सदाबहार का। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं प्रदेश के मौसम का हाल और सुनवाते हैं आपको चंद सदाबहार नगमे। तो चलिए एक नजर झांकते हैं मौसम के हाल पर। जी हाँ, आज ईटानगर क्षेत्र में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना जताई जा रही है और वर्षा की संभावना भी जताई जा रही है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि द मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और भारी बारिश के साथ आंधी आने की प्रबल संभावना जताई गई है। स्टूडियो के बाहर झांकने पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। वैसे सुबह काफी साफ आसमान था। तो श्रोता मित्रों, अगर खिली धूप या फिर धूप को देखकर आप बिना छाता या बिना रेनकोट के और बिना तैयारी के बाहर निकलना चाहते हैं तो दोबारा जरूर सोचिए, क्योंकि वर्षा का कोई भरोसा नहीं। ये कभी भी किसी भी

वक्त बरस सकते हैं। तो श्रोता मित्रों, ये था मौसम का हाल। तो चलिए कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है चंद बेहतरीन गीतों का।

श्रोत मित्र आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार गीतों का। जी हाँ, इस गीत का आप सुन रहे थे आग और शोला फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। और इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत प्यार के कागज पे।

गीतकार समीर द्वारा लिखे इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे जिगर फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाजों में धुन दिया है आनंद मिलिंद ने। और इसी के साथ ही सदाबहार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। और हाँ श्रोता मित्रों, आपके समक्ष हम पुनः प्रस्तुत होंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ 8:40 पर। तो आप बने रहे अरुण एफएम के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें समाचारों के लिए।

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घ कालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन

0: यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
4: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
3: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
5: Assam cabinet so passed uniform civil code. We customized that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of uniform civil code. The UCC bill will be laid before the assembly on 26th of May.
3: With this move, Assam is said to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil

श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली एवं शिलोंग केंद्र से प्रसारित समाचारों को, और इसी के साथ ही आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 8:40 हो रहे हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हेलो ईटानगर कार्यक्रम के सेगमेंट में आज हम इतिहास के पन्नों से दो महान व्यक्तियों की जीवनी आप सभी से साझा करेंगे। इससे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

चमेली फिल्म से इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में। श्रोता मित्रों, मार्क जुकरबर्ग का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके नाम सबसे कम उम्र में बिलियनियर बनने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही कंपनी बना ली थी और आज दुनिया के सबसे बड़े रईसों में वे शामिल हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। खेलते

फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की। जी हाँ, उनका जन्म आज ही के दिन 14 मई को सन 1984 में न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेस में हुआ था। जुकरबर्ग ने साल 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में अपने तीन दोस्तों के साथ फेसबुक की स्थापना की थी और आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क साइट है। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही आज हम आपको बताना चाहेंगे मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ी कुछ चंद बातें। जी हाँ, वीर शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की आज जयंती है 14 मई। जी हाँ, 1657 14 मई में इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही अपने पिता शिवाजी के जैसे वीर योद्धा थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। आज भी इनकी वीरता की कहानियां पढ़ी और सुनी जाती हैं। संभाजी बचपन से ही राजनीति के ज्ञाता रहे और कई अवसरों पर उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय भी दिया। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

एनिमल फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। जी हाँ श्रोता मित्रों, इस गीत के साथ ही हेलो ईटानगर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज हमने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी से जुड़ी कुछ बातें आप सभी से साझा की और सुनवाए कुछ चुनिंदे गाने। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारण होने वाले समाचारों को। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया है। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमरीका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपए और तिल के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Artemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोता मित्र, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:11 हो रहे हैं और इसी के साथ ही प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप। जी हाँ, जिसके तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। तो उम्मीद है आप आगे हमारे साथ बने रहेंगे कार्यक्रम के अंत तक। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि रितेश देशमुख स्टारर फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। फिल्म को सबसे बड़ी मराठी फिल्म बनने के लिए अभी इतना सफर और तय करना होगा। जी हां, रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी फिल्म राजा शिवाजी धीरे धीरे 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की तरफ बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वीकेंड तक ये फिल्म इस जादुई आंकड़ों को पार कर लेगी। जी हां, रितेश के अलावा फिल्म में अभिषेक बच्चन, सलमान खान, भाग्यश्री, संजय दत्त और जेनेलिया डिसोजा ने भी काम किया है। फिल्म में विद्या बालन अहम किरदार निभाती नजर आई हैं। बीते बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी का 13वीं दिन था और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की कमाई के साथ इसने अपने टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन में कुछ नंबर्स और जोड़ लिए हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही कार्यक्रम में फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं दो दीवाने शहर में फिल्म का ये गीत।

दो दीवाने शहर में फिल्म से इस प्यारे गीत को आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में। श्रोता मित्रों, कल यानी कि 15 में शुक्रवार के दिन आप थोड़ी भी देर के लिए बोर नहीं होंगे। क्यों? इस दिन सिनेमा घरों और ओटीटी पर एक या दो नहीं बल्कि कई सारी फिल्में सीरीज आ रही हैं। मतलब वीकेंड पर आप सिनेमा घरों में भी नई फिल्में एंजॉय कर पाएंगे और घर बैठकर ओटीटी पर भी मजेदार देख पाएंगे। तो अब हम आगे आपको बताएंगे शुक्रवार के दिन आने वाली फिल्म और सीरीज के बारे में। जी हाँ, श्रोता मित्र, आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर धुरंधर 2 फिल्म आप देख सकते हैं। जी हाँ, भारतीय जासूस जसकीरत सिंह कराची के अंडरवर्ल्ड में हमजा अली मजारी बनकर घुसपैठ करता है। जी हाँ, इस फिल्म को आप घर बैठे नेटफ्लिक्स में जी हाँ एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एग्जाम द सिस्टम एक्सपोज, इसे भी आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि थिमारा जुपल्ली टीवी, जी हाँ, इसे भी आप आहा वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 1996 के दौर की ये कहानी गांव के उस एक लौते टीवी के इर्द गिर्द घूमती है जो अचानक चोरी हो जाता है। शक गांव के छोटे चोर सतीश पर जाता है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सतीश को असली चोर खुद ढूंढना होगा। तो श्रोता मित्रों, आगे हम बताएंगे कल आप किन-किन जी हाँ सीरीज और फिल्मों को देखकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे चांद मेरा दिल फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग। आपको बता दें कि ये फिल्म 22 यानी कि 22 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवेक सोनी द्वारा निर्देशित है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें आप अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी को देख पाएंगे। जी हाँ श्रोता मित्र, हम बात कर रहे हैं कल आप किन किन फिल्मों और सीरीज का आनंद ले पाएंगे। तो आपको बता दें कि कल आप नेटफ्लिक्स में कर्तव्य का आनंद ले पाएंगे, जिसमें सैफ अली खान, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, सौरभ द्विवेदी हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारी के बीच फंस जाता है। इसमें सैफ अली खान एक ऐसे आदमी का रोल कर रहे हैं जो सही और गलत के बीच उलझा हुआ है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ श्रोता मित्र, आप देख सकते हैं जियो हॉट स्टार में इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2। जी हाँ, रणदीप हुड्डा, अभिमन्यु सिंह, उर्वशी रोतेला, रजनीश दुगल, जी हाँ इन्हें आप देख सकते हैं इस सीरीज में। 90 के दशक के उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर अविनाश एक व्यक्तिगत संकट से जूझ रहे हैं। उनकी शादी टूटने की कगार पर है और उनका बेटा हत्या का संदिग्ध है। अब इंस्पेक्टर अविनाश को अपने परिवार को बचाने के लिए कानून और अपनी ड्यूटी के बीच सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी। जी हाँ, आप इस सीरीज का आनंद ले सकते हैं जियो हॉटस्टार में। और हाँ श्रोता मित्र, आप थिएटर में कल देख सकते हैं पति पत्नी और वो दो। जी हाँ, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गब्बी इसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की एक ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर कहानी प्रजापति के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब वो नेक इरादे से किसी की मदद करता है। उसकी छोटी सी मदद गलतफहमियों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देती है कि वो तीन महिलाओं के बीच पूरी तरह फंस जाता है। और हाँ श्रोता मित्रों, संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल। जी हाँ, आप इसे थिएटर में देख सकते हैं। और ये फिल्म आरएसएस की 100 सालों की यात्रा और उसकी सोच कैसे बदली इस पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि भारत के इतिहास की बड़ी घटनाओं के दौरान संगठन की क्या भूमिका रही। संजय दत्त इसमें एक बहुत ही प्रभावशाली किरदार निभा रहे हैं और इसके साथ ही समीरा रेड्डी और नीतू चंद्रा भी इस फिल्म में आप देख पाएंगे। तो चलिए श्रोता मित्र, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है फिल्मी गपशप में। जी हाँ श्रोता मित्रों, बॉलीवुड में स्टार्स के बॉडीगार्ड्स को लेकर खबरें चलती रहती हैं, उनकी फीस को लेकर भी खूब चर्चा होती है। हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में आलिया भट्ट की सिक्योरिटी सबको दिख गई। उनके बॉडीगार्ड यूसुफ अब्राहिम ने सैलरी को लेकर बात की है। आलिया भट्ट की सुरक्षा टीम कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में वायरल हो गई है और अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनकी सिक्योरिटी कौन देख रहा है। उनकी सुरक्षा के पीछे यूसुफ इब्राहिम, जो 911 प्रोजेक्शन के प्रोटेक्शन के मालिक हैं और एक दशक से भी अधिक समय से उनके साथ है। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट से लेकर रणवीर कपूर के साथ उनकी शादी तक वे हर पल उनके साथ रहे हैं। आइए जानते हैं यूसुफ इब्राहिम कौन है, वे किन स्टार्स की सुरक्षा करते हैं और उनकी कमाई कितनी। यूसुफ इब्राहिम बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद सेलिब्रिटी सुरक्षा एजेंसियों में से एक 911 प्रोटेक्शन के मालिक हैं। वे एक दशक से अधिक समय से आलिया भट्ट के बॉडीगार्ड और सुरक्षा प्रभारी रहे हैं और उनके हर इवेंट में वो देखे जाते हैं। वे इंडस्ट्री में अपने परफेक्शन तरीके और जिन स्टार्स की वे सुरक्षा करते हैं उनके प्रति अटूट विश्वास के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मई 2026 में कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट की उपस्थिति के दौरान उनकी सुरक्षा टीम के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। फैंस ने टीम के लोगों की उपस्थिति और एक्ट्रेस के आसपास उनकी मौजूदगी पर ध्यान दिया। इस वायरल घटना ने लोगों में एक्साइटमेंट जगा दी कि आलिया की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है और वे कब से उनके साथ हैं। यूसुफ इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर चल रही बॉडीगार्ड्स की फीस पर भी रिएक्ट किया है। उन्होंने उन वायरल दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि टॉप स्टार्स के बॉडीगार्ड्स सालाना 1.2 करोड़ से 2.7 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। सच ये है कि बॉलीवुड में एक सामान्य सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड की मासिक आय 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि स्टार कितना एक्टिव होकर काम कर रहा है। तो ये हुई बॉलीवुड स्टार्स के बॉडी गार्ड की खबर। तो चले इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

दबंग 3 फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे सलमान अली और मुस्कान की आवाजों में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आपको बता दें कि सई पल्लवी से डगमगाया मेकर्स का भरोसा, इधर एक दिन हुई फ्लॉप उधर सीता के रोल पर बड़ा फैसला। जी हाँ, सई पल्लवी की फिल्म एक दिन बॉक्स ऑफिस पर तो पूरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन इसमें उनकी हिंदी सुनकर भी लोग दंग रह गए। तमाम आलोचनाओं के बीच रामायण के मेकर्स ने कथित तौर पर एक्ट्रेस के लिए बड़ा फैसला लिया है। ऐसा लगता है कि रामायण के निर्माता सई पल्लवी की हालिया रिलीज एक दिन से खुश नहीं है। रणवीर कपूर की फिल्म में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस को एक दिन फिल्म में उनके हिंदी उच्चारण को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। 1 मई को रिलीज हुई इस फिल्म में जुनैद खान भी लीड रोल में है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। यूं कहें कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसे देखते हुए रामायण के मेकर सई पल्लवी के लिए बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जी हाँ, इन सब के बीच एक रिपोर्ट के अनुसार रामायण के फिल्म निर्माता सई पल्लवी

रवि के डायलॉग्स की डबिंग पर सोच रहे हैं। खबरों के मुताबिक वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि रामायण में भाषा अधिक साफ सुथरी और असली लगे। ये निर्णय कथित तौर पर इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि सई पल्लवी फिल्म में सीता का किरदार निभा रहे हैं, जिसके लिए हिंदी उच्चारण बहुत अच्छी होना जरूरी है। हालांकि ये भी ध्यान रहे कि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो श्रोता मित्रों, बॉलीवुड की गलियों से आज बस इतनी ही खबर के साथ हम आपको सुनवाना चाहते हैं कार्यक्रम के अंत में ये गीत।

अलविदा इस गीत को आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा की आवाज में आंखों की गुस्ताखियां फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्रों, इस गीत के साथ ही फिल्मी गपशप का कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। और आपको बताते हैं कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद हम आपसे जुड़ेंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ। तो आप बने रहे अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितम्बर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोता मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है यहाँ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। और आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचारों को। जी हाँ श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इस वक्त सुबह के 10:10 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

वीडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में हमारे सभी डियर लिसनर्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्र, रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का आप सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार, तो चलिए बिना वक्त जाया किए आपकी फरमाइश गीतों को सुनवाते हैं। जी हाँ, तो चलिए प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, कुमार सानू की आवाज में सबसे बड़ा खिलाड़ी फिल्म से। और आपको बता दें कि इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है रमेश पात्रो ने, रानू पात्रो और लक्की ने गोलाघाट असम से। और आप डेडिकेट करना चाहते हैं इस गीत को अमल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, बाईकोन मुंडा, जगंद्रा रोंगपी और सुनाली इंतीपी और साथ ही अंजलि बसुमतारी को। उम्मीद है आप सभी हमारे साथ जुड़े होंगे, यानी कि अरुण एफएम के साथ जुड़े होंगे और आप हमें सुन रहे होंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है आपका पसंदीदा गाना।

रमेश जी, इस खूबसूरत गीत की फरमाइश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्त, आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में सबसे बड़ा खिलाड़ी फिल्म से ये गीत। जी हाँ, इस गीत के क्या बोल है। जी हाँ दोस्त, मुझे तो बड़ा पसंद आया ये गीत। उम्मीद है आप सभी श्रोताओं को भी जरूर पसंद आया होगा। और इसी के साथ ही अगला SMS हम लेते हैं। जी हाँ, ये हमें भेजा गया है लोंगडिंग जिला से और लिखने वाले हैं जापो पोयहाम। और आप सुनना चाहते हैं जुर्म फिल्म का ये बेहद ही प्यारा गीत। तो लीजिए, प्रस्तुत है जापो जी। उम्मीद है आप हमें सुन रहे होंगे, तो आनंद लीजिए अपने पसंदीदा गीत का।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी का पुनः स्वागत है ब्रेक के बाद। श्रोता मित्र, अगर आप अपना कोई पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं या अपने किसी खास को डेडिकेट करना चाहते हैं तो फोन उठाइए और इस नंबर पर। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से सुनिए 9436887808 पर हमें एसएमएस भेज दीजिए। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ ही चले अब हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत। जी हाँ, जिस गीत के लिए हमें संदेश भेजा गया है कार्बी आंगलोंग से गिरेन तारोन जी ने, और आप सुनना चाहते हैं 90 के दशक का बेहद ही पसंदीदा गीत आशिकी फिल्म से। तो लीजिए, प्रस्तुत है अब तेरे बिन ये गाना।

आशिकी फिल्म कैसे खूबसूरत गीत के लिए गिरेन कारून जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इसी तरह आप अरुण एफएम के साथ जुड़े रहेंगे और हमें ढेरों एसएमएस भेजा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत। जी हाँ, इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है गेकन जी ने, जो कि ईटानगर चिंपू से है। और गेकन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण एफएम के साथ जुड़ने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद है आप इस वक्त हमें जरूर सुन रहे होंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है अगला गीत आपका पसंदीदा।

0: श्रोता मित्र, इस बेहद ही खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे कारवा फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में, जिसकी फरमाइश हमें की थी मैनम पेगुची ने बंदर देवा से। जी हाँ मैनम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आगे भी आप हमें यूं ही लिखा करेंगे। तो इसी के साथ ही श्रोता मित्र, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा मत।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dil se dil tak बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

जी हाँ श्रोता मित्र, जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। जी हाँ, इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से। और इस गीत की फरमाइश करने के लिए दीपक कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपने हमें लिखा है, जी हाँ नाहरलगन से। उम्मीद है आपने अपने पसंद के इस गीत को जरूर सुना होगा। उम्मीद है इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ ही श्रोता मित्रों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत साथी मेरे सुन तो जरा। और इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है, जी हाँ हमारे राजधानी क्षेत्र से ही। और हमें लिखा है, जी हाँ हमें लिखा है तानाजी ने। तानाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद है आप इस वक्त हमें सुन रहे होंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश में ये गीत।

मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

श्रोता मित्रों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अरुण एफएम के साथ जुड़े रहने के लिए, कार्यक्रम में रिक्वेस्ट एसएमएस भेजने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्यार अरुण एफएम के साथ यूं ही बना रहेगा। और हाँ दोस्तों, हमें लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए, इसी के साथ ही अब प्रस्तुत करते हैं हमारी आखिरी फरमाइश। और इस फरमाइश को हमें भेजा है महेश कुमार ने नाहरलगन से, और आप सुनना चाहते हैं कच्चे धागे फिल्म का ये गीत। महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोता मित्र महेश जी की फरमाइश में आप सुन रहे थे कच्चे धागे फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम की समाप्ति पर हम आ पहुंचे हैं और इसी के साथ ही आप सभी से अलविदा कहने का वक्त भी हो चला है। जी हाँ श्रोता मित्रों, उम्मीद है इस पहले प्रसारण सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को पसंद आए होंगे। इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता विमल शर्मा और अन्य सहकर्मी। जाने से पहले श्रोता मित्र आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को, जिसके तुरंत बाद यानी कि 11:10 पर जी हां आप से जुड़ने वाली है हमारी दूसरी प्रसारण के साथ आप सबके चहेती आरजे दामपात। तो श्रोता मित्रों, अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी नीलम को जाने की दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। फिलहाल हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव

0: रूफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि थे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक के वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The two-day meeting of BRICS foreign ministers being hosted by India is underway in New Delhi. The meeting is being chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries are participating in the meeting. Making the initial remarks, Dr. Jayashankar said that the meeting is happening at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties and challenges in trade and technology, and climate are shaping the global landscape. He added that there is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role.
3: Our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. Many countries face challenges on energy, food, fertilizer and health security, as also access to finance. BRICS can help them respond more effectively.
2: The theme for India's BRICS chairship this year is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Modi's humanity first and people-centric vision for BRICS. The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Directorate General of Foreign Trade has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to EU and US under CXL and TRQ quota, the advance authorization scheme, and government-to-government shipments to meet food security needs of other countries. Consignments already in the physical export pipeline are also exempted. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that from agriculture, digital infrastructure, healthcare and clean energy to manufacturing and technology partnership, the next phase of India-Africa collaboration will be built on higher value products and integrated supply chains. Speaking at the curtain raiser for the India-Africa Business Dialogue and Exhibition and the India-Africa Forum Summit in New Delhi yesterday, the minister highlighted how India and Africa together can shape a more inclusive, resilient and innovation-driven future for the global south. Mr. Goyal said he looks forward to a very successful India-Africa Business Dialogue and Exhibition to be held from the 29th to 31st of this month in New Delhi, alongside the 4th India-Africa Forum Summit. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oilseeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. In Uttar Pradesh, a sudden change in weather conditions has caused widespread devastation across the state, with storms, heavy rain and lightning strikes claiming 60 lives in the last 24 hours. More than 100 people got injured also and have been admitted to hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Benchmark equity indices Sensex and Nifty climbed in early trade today, driven by buying in banking shares and positive cues from Asian markets amid optimism surrounding the ongoing US-China summit. The 30-share BSE Sensex jumped 450.51 points or 0.6% to 75,059.49 in early trade. Nifty advanced 169.95 points to 23,582.55. And that is the end of this news bulletin.

श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली के केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफ एम है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे नीलम जी, मुझे आगे के कारोबार और आप सभी के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया आपने। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। आपको बता दूं, इसी के साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहले पहली प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे नीलम जी के साथ, और अब आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी आरजे दंपा के साथ। श्रोता, हमारी इस दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। तो अब चलिए श्रोता, दूसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए पेश है कार्यक्रम फिल्मी लहर। दोस्तों, हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत जारी रखिए और कभी हार मत मानिए। आज की कोशिश कल की सफलता बनेगी। याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। तो श्रोताओ, इस सुविचार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर किस बात की, पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रॉय से। गीत के बोल है चिटिया कलैया और इस गीत को आवाज दी है मीट ब्रोस और कनिका कपूर ने।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत विशाल ददलानी की आवाज में फिल्म आई हेट लव स्टोरी से। आपको बता दो कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी लहर में। अब चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए पेश है आर राजकुमार फिल्म से गीत धोखाधड़ी, और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल और प्रीतम चक्रवर्ती ने। दोस्तों, आपको बता दूं कि आर राजकुमार हिंदी एक्शन रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु नेवा ने किया था। फिल्म में शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी राजकुमार नाम के एक लड़के पर आधारित है जो एक छोटे शहर में रहता है और स्थानीय डॉन के लिए काम करता है। उसकी मुलाकात चंदा से होती है और दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन चंदा पर एक खतरनाक ड्रग माफिया की भी नजर होती है, जिसके बाद कहानी में एक्शन रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार हैं शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, सोनू सूद और आशीष विद्यार्थी। दोस्तों, फिल्म अपने मसालेदार डायलॉग्स और दमदार एक्शन के लिए जानी जाती है। शाहिद कपूर का डांस और स्टाइल दर्शकों को काफी पसंद आया था। गाने जैसे सारी के फॉल्सा और गंदी बात बहुत लोकप्रिय हुए थे। फिल्म का संगीत प्रीतम ने दिया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और खासकर सिंगल स्क्रीन दर्शकों में काफी लोकप्रिय रहे। तो चलिए कार्यक्रम फिल्मी लहर में पेश है गीत आर राजकुमार फिल्म से।

0: बस अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने

0: कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. A 2-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, peace and security remain central to the global order. He said the recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. He emphasized that in this complicated and uncertain world, discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्त, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुणा एफएम है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। दोस्तों, इस सेगमेंट पर हम वही गाने बजाएंगे जो अपने आप में ही खास हैं। जी हाँ, तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत परश पाहुजा की आवाज में दूरों।

बस अभी आप सुन रहे थे कि रिजेस में संदास की आवाज में आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में। और अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश है कुशाग्रा की आवाज में गीत फाइंडिंग हाउस।

2023 की दया पे दिलन और श्रेया घोषाल की आवाज में। अब आपके लिए पेश है गीत बादशाह की आवाज में, चुप रहो।

दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं और आपके लिए अब पेश है कार्यक्रम फौजी भाइयों और बहनों का गीत माला।

दोस्तों, बोझी भाई और बहनों के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर हम गाने प्ले करते हैं हमारे फौजी भाई और बहनों के लिए जो हमारी रक्षा करते हैं। जी हाँ, तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, चले चलो श्रीनिवास और ए आर रहमान की आवाज में फिल्म लगान से।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम हमारे फौजी भाई और बहनों के लिए गाने बजाते हैं। आपको बता दूं कि हमारे सभी फौजी भाई और बहनों को दिल से सलाम। आपकी हिम्मत, त्याग और देशभक्ति की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। तो दोस्तों कार्यक्रम में और आगे बढ़ती हुए पेश है गीत चाइना गेट फिल्म से। गीत के बोल है छम्मा और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक ने।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत माला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक बीडी सतीशन केरलम के नेग्रेटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश
2: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश।
3: नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
2: अमल जी, फिर से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
3: जी। बागान पे काम करते

0: करते आपके साथ बातचीत हो पाए, बहुत खुशी लग रहा है।
1: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बागान में तो अभी ठंडी होगी।
0: हाँ, थोड़ी पहले तो बारिश हुआ था, लेकिन
1: अच्छा,
0: अभी अभी बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, ठंडा
1: ओके, ठंडा
0: ठंडा
1: ठंडा हवा चल रहा है ना, बढ़िया।
0: जी।
1: ओके, बढ़िया मौसम। और कौन कौन है
0: हाँ,
1: साथ में?
0: और साथ में मेरा भाभी है, सासू माँ है और तीन बिटिया है।
1: ओके, सभी मिलकर के काम करते हैं बागान में।
0: हाँ, मेरे
1: ओके,
0: भैया का सासू माँ है अभी।
1: अच्छा, वाह, काफी सारे लोग हैं आप।
0: हाँ,
1: अच्छा, वो
0: उसमें
1: लोग
0: भी
1: भी
0: बगल
1: रेडियो सुनते हैं क्या?
0: पास्टोर रहा है।
1: अच्छा, वो लोग रेडियो सुनते हैं।
0: हाँ, मैं रेडियो लगा देता है ना, सब सब
1: अच्छा,
0: दोस्त लोग सुनता है, सभी घर वालों ने सुनता है
1: ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
0: जी। और वहाँ का मौसम कैसा है, थोड़ा बताइए
1: हाँ, यहाँ पे मौसम बढ़िया है। रात को बारिश हुआ था, अभी तो बारिश नहीं है,
0: जी।
1: लेकिन यहाँ पे भी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। हाँ जी,
0: मेरा
1: हाँ
0: एक फरमाइश था,
1: जी, हाँ बताइए।
0: तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर फिल्म का जो दिल सुनता है गाना है ना, उसको सुनना है,
1: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और
0: जो
1: किन लोग के साथ?
0: अनुराधा की आवाज में था ना, उसको सुनना है।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर।
0: और हमारे दोस्तों को याद कर लेता हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: सबसे पहले मेरा सोराइडियो का जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है भाईकोन मुंडा, और
1: ओके।
0: धेमाजी से बिमल बसुमतारी, लखेंद्र वर्मा जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनब कुमार भट्टाचार्य जी है, और हमारे रमेश प्रजापति है, रमेश पात्रो है, जगेंद्र रोंफी है, और अंजलि बसुमतारी, दरासर बसुमतारी है, और आपको भी तो ये गाना डेडिकेट
1: जी जी जी
0: रहेगा,
1: जी मैं भी जरूर सुनूंगा। हाँ
0: और
1: जी,
0: आरजी नूरी मैम को भी ये गाना डेडिकेट रहेगा
1: ओके
0: जी, और सभी दोस्तों के लिए मैं ये गाना को डेडिकेट कर रहा हूँ, सबको
1: ओके
0: सुनाना चाहता हूँ।
1: जी, सभी दोस्तों को आप इस गीत को सुनाना चाहते हैं। तो अमोल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। अरे वागरा साहब, सादर सप्रेम, प्यार में नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से शारदा प्रसाद जी।
1: जी निसंदेह आपने हमें सही पहचाना
0: जी।
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश की आरणी वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर।
0: जी जी जी जी हमारे प्रिय श्रोता शारदा प्रसाद जी जो हमें काफी अच्छी जानकारी देते हैं। जी
1: जी धन्यवाद।
0: जी जी जी और आज कहिए कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: मौसम तो आज काफी गर्म हो रहा है, तापमान लगभग 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड के अभी है हो गया है, और शाम तक ये तो तापमान और कुछ बढ़ जाएगा, 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा।
0: जी जी
1: रात
0: जी
1: में 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड का मिनिमम रहता है।
0: ओके, रात को मौसम थोड़ा ठीक ही रहता है।
1: जी जी जी
0: ओके। और कुछ नया कुछ चल रहा है वहाँ पे सुनाइए मथुरा में?
1: नया इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा है, गर्मी के मारे हाल बेहाल है, पर्यटक भी बहुत कम आ रहे हैं और श्रद्धालु भी सुबह सुबह जो जाते हैं तो मंदिर अपना दर्शन करके आ जाते हैं।
0: तो बेहतर है घर पे ही रहें और हमारा कार्यक्रम सुनते रहें।
1: जी बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है। आकाशवाणी से जुड़े रहिए, सूचना शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुनते रहिए, और लू से भी बचने का अपना एक माध्यम बनता है।
0: जी,
1: हम आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें लगने की कोई समस्या नहीं होगी। इससे काफी गर्मी हो रही इसलिए घर के अंदर कार्यक्रम को सुने और आनंद पूर्वक जीवन यापन करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शारदा प्रसाद जी। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: फिर मिलन के गीत रे मित्रवा, फिर मिलन के गीत, ये गीत सिंहेश नाग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर।
0: जी जरूर सुनाएंगे, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा सुरीला गीत है, मैं सर्वप्रथम अपने परम मित्र आदरणीय वागरा साहब को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और हमारे मित्र हैं सर्वश्री अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेन वर्मा है, राजू यादव जी हैं, साथ में राकेश कुमार जी हैं, अर्जुन प्रधान हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ शर्मा जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और विजय कुमार पांडे हैं, केशव प्रसाद शर्मा जी, विद्यारत्न शर्मा, तेज चंद्र अग्रवाल भैया, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर को सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: सभी को समर्पित करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा प्रसाद जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी हृदय धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जगदीश राय गर्ग जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और
1: सर जी,
0: सुनाइए।
1: आपका भी हमारा बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी फिलहाल क्या चल रहा है?
1: बस जी, अभी खूबसूरत वादियों का मौसम का नजारा ले रहे हैं। जहाँ
0: अच्छा।
1: बड़ा खुशगवार जहाँ का वातावरण है, माहौल है, पालमपुर जैसे एक जन्नत है जहाँ।
0: ओके, क्या बात है। बर्फबारी होती है आपके वहां पे?
1: हम बर्फबारी ऊपर पहाड़ों पे होती है
0: अच्छा
1: जी,
0: अच्छा
1: तो
0: पहाड़ों पे होती है। ओके।
1: नीचे मैदानों में कम होती है। वैसे मजा बहुत मिलता है क्योंकि ऊपर पहाड़ियों के जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो पहाड़ियों पे
0: क्या बात है, क्या बात है। जी।
1: दिखाई पड़ती है, और नीचे भी बड़ा खूबसूरत नजारा होता है। घुमावदार सड़कें और आसपास झरने बहते हैं, तो बड़ा मजा आता है।
0: क्या बात है जगदीश जी, आप तो सही में जन्नत में रह रहे हैं
1: बिल्कुल सर जी,
0: जी।
1: जन्नत ही है।
0: ओके। और अगर कोई पर्यटक वहां घूमने आए तो कौन कौन से जगह घूम सकते हैं?
1: हमारे जहाँ आसपास कहीं भी निकल जाएं, वैसे
0: अच्छा।
1: तो हमारे जो पालमपुर शहर ही एक ऐसा है इसमें जो चाय के बागान हैं आसपास वो
0: ओके।
1: देखने लायक हैं, बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। ऊपर से नीचे को जैसे देखने में इतने सुंदर नजर आते हैं कि बस
0: जी
1: देखे जाएं उनको।
0: ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया नजारा।
1: थोड़ी थोड़ी दूर निकल जाएं तो आसपास के गांव भी जहां देखने लायक हैं, गांव भी ऐसे हैं
0: अच्छा
1: सचमुच जन्नती हैं।
0: ओके। और गांव में खेती बाड़ी होती है
1: हाँ,
0: कि?
1: जहाँ बस ज्यादा तो जहाँ चाय की खेती होती है जी,
0: अच्छा। जी।
1: और थोड़ी बहुत ही जहाँ ज्यादा कुछ थोड़ा सा मैदानी इलाका आ जाए तो वहाँ गेहूं की खेती भी होती है।
0: ओके। जी।
1: ज्यादा तो जहाँ चाय के बागानी है, क्योंकि ऐसा है ना, जहाँ का ढलाने हैं, ढलानों पर चाय बहुत अच्छी होती है जी।
0: ओके। और वहां का चाय कहाँ कहाँ जाता है?
1: चाय जहाँ का, जहाँ हिंदुस्तान के सभी शहरों में अक्सर जाता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि थोड़ा सा चाय इस जगह का काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो थोड़ा
0: ओके
1: सा
0: अच्छा।
1: महंगा भी है,
0: जी।
1: जाता सारे देश में है फिर भी।
0: ओके, कोई बात नहीं। अगर दाम कुछ ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो
1: हाँ,
0: क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए।
1: क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेहत के लिए
0: ओके
1: बहुत अच्छी क्वालिटी है।
0: ओके। तो चलिए, मैं भी ढूंढता हूँ आपके वहां का, अगर चाय यहाँ पे मिलता है तो जरूर ट्राई
1: जरूर
0: करूंगा।
1: मिलेगा सर, जरूर
0: जी
1: मिलेगा, कहीं
0: जी
1: भी मिलेगा।
0: जी जी जी जी तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आपसे जगदीश गर्ग जी। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सर आज गीत सुनेंगे, फिल्म है जी आज और कल,
0: ओके।
1: तो उसका गीत है रफी साहब जी की आवाज में। मैं उसकी दो लाइनें
0: जी जी
1: गुनगुना
0: जी
1: के बता दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।
1: जिवा दिया जिफी जाए,

0: तुम्हें ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: क्या बात है, क्या बात है. आपका इशारा मैं समझ गया. पालमपुर की खूबसूरत वादियां हमें ही बुला रही हैं. जरूर आएंगे.
0: बुला, बिल्कुल
1: जी
0: सर,
1: जी
0: बिल्कुल बुला
1: जी
0: रही
1: जी
0: हैं, और हम आपका बहुत स्वागत करेंगे अगर
1: जी
0: आप भी इधर आए और कोई भी दोस्त श्रोता भी अगर आए तो।
1: ओके. जी जी जी हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं जरूर आएंगे वे. हम यही उम्मीद
0: बिल्कुल
1: करते. और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: मेरे मित्र हैं जी, गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, जोगेश जांगड़े जी हैं, उदयलाल टेलर जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, और सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से भी हैं, और गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड से।
1: ओके. तो इन सभी दोस्तों के साथ आप सुनना चाहते हैं इस प्यारे से गीत को.
0: जी सर,
1: तो जगदीश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सुनते हैं आपके पसंद का गाना.
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: भगवान सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: जी सर बढ़िया है सर। आकाशवाणी ईटानगर को हम हमेशा सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप पेश करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: और कौन कौन सा स्टेशन सुनते हैं आप? कौन कौन सा केंद्र सुनते हैं?
1: स्टेशन तो हम करीबन 400 स्टेशन सुनते हैं, लेकिन हमें ईटानगर भी जब फोन इन कार्यक्रम होता है जब सुनते हैं।
0: ओके, क्या बात है, 400 से ज्यादा स्टेशन से।
1: और हर आकाशवाणी पर कॉल भी लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी।
1: और हमारा एक ग्रुप बना है हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप सर, उसमें भारत के हर राज्य के श्रोता जुड़े हुए हैं।
0: जी काफी श्रोता हमें कॉल करते हैं और बताते हैं इस ग्रुप के बारे में। सही है, जान करके
1: के माध्यम से ही उसमें डाटा आता है सर पूरा, कि कब कॉल लगाना है, कब उसका प्रसारण होता है, कौन से नंबर पे लगाना है सर, पूरा उसमें डाटा रहता है।
0: क्या बात है क्या बात है। ये सब काम तो एडमिन लोग ही करते होंगे।
1: जी जी सर।
0: जी
1: गौतम राय बोले सर हैं, वो ये काम अपनी खूबी निभाते हैं, रोज लिस्ट डालते हैं, रोज बताते भी हैं।
0: क्या बात है क्या बात है। उनको हमारी ओर से सलाम और नमस्कार कहिएगा।
1: जी
0: जी जी। तो चलिए कहिए। हाँ जी।
1: हाँ सर, फिल्म का नाम बता देता हूँ आपको। फिल्म का नाम है जीत और गाने के बोल है बातों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है।
0: ओके जी। और किन लोगों के साथ?
1: दोस्तों के नाम। हाँ सर, कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे तो आपको
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूरा से है बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी, पूनम दीदी कानपुर से, बिजरपुरम से हैं पूर्णिमा दीदी, और केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी और रमेश प्रजापति, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर।
0: ओके, तो भगवान सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर नमस्ते
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, कैसे हो आप?
1: जी थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, और जब भी आप लोगों से बातचीत होती है और भी बढ़िया हो जाता हूँ।
1: जी मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, किसी भी आकाशवाणी में कॉल लगता है, किसी भी आदमी से बात होती है तो मैं और भी अच्छा हो जाता हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको
1: जी बताऊं सर, बड़ा अच्छा आकाशवाणी में कॉल लगा के बात करना
0: जी।
1: इसमें अपनी पसंद का गाना सुनने के साथ में अपनी आवाज के साथ में जब कॉल प्रसारित होता है ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। गाना सुनने तो क्या है कि हम यूट्यूब पे सुन सकते हैं, मोबाइल।
0: हाँ जी हाँ जी।

0: टीवी देख सकते हैं,
1: जी जी जी जी
0: लेकिन जब आकाशवाणी पे अपनी पसंद का गाना बजता है ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको बेहतरीन गाने सुनाते रहेंगे।
0: जी उसी साथ में सर आपको बताऊं, जैसे अभी मोबाइल ऐप से कार्यक्रम आने लगे हैं ना,
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो
1: हाँ जी
0: मतलब बिल्कुल श्रोताओं का है, और मतलब पहले आकाशवाणी इतना लोग नहीं सुन पाते थे क्योंकि रेडियो पर प्रसारण नहीं मिल पाता था,
1: जी जी जी जी
0: लेकिन जब मोबाइल ऐप पे जब शुरू हुआ ना तो काफी श्रोता बढ़ चुके
1: जी,
0: हैं।
1: काफी लोग सुनते हैं आजकल रेडियो ऐप के जरिए। जी बहुत ही
0: जी
1: अच्छी जानकारी।
0: उसमें बड़ा फायदा हुआ, स्पष्ट प्रसारण मिलता है, हर राज्य का प्रसारण मिलता है, और कहीं पर भी जाओ तो कार्यक्रम सुनने को मिल ही जाता
1: जी
0: है।
1: जी जी आप घर पर रहें या बाहर कहीं भी आप सुन सकते हैं। जी
0: पहले क्या होता था, जैसे ट्रांजिस्टर पे मिलता था ना प्रसारण,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: केवल घर पे ही सुन सकते थे, या कहीं बाहर जाए तो ट्रांजिस्टर को तो ले जाना असुविधाजनक होता था।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही है।
0: तो मतलब ये जो मोबाइल पर आने लगा है ना, तो ये समझिए कि आकाशवाणी का प्रचार है तो फिर से बढ़ चुका है।
1: जी
0: जी सर
1: जी
0: एक बात और है, जैसे जो भी श्रोता आकाशवाणी से जुड़ चुके हैं ना, तो उनका तो मतलब आकाशवाणी का मतलब उन्होंने अपना परिवार ही समझ लिया है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी बिल्कुल सर।
1: जी
0: और जब अनाउंसर से बात होती है ना, तो सर भी इतने अच्छे होते हैं, आप भी इतने अच्छे होते हैं, हम भी इतने अच्छे होते हैं,
1: जी
0: तो कार्यक्रम में यूं ही रोचकता बढ़ जाती है।
1: जी चार चांद लग जाता है जी प्रोग्राम
0: जी
1: में।
0: बिल्कुल सर।
1: जी तो
0: सर
1: बहुत ही
0: मैं
1: अच्छी
0: बताऊँ,
1: बात।
0: हमारे यहाँ पे मौसम थोड़ा अभी गर्मी बढ़ चुकी है, और मतलब तापमान भी बड़ा है, मतलब गर्मी होने के साथ साथ में गर्म हवाएं भी चल रही है,
1: ओके
0: परसों मतलब धूल भरी आंधियां भी चली थी।
1: ओहो जी जी जी जी
0: जी हाँ, बट है ना अच्छा लग रहा है फिर भी।
1: ओके तो ऐसे मौसम में तो
0: जी
1: घर के
0: सर।
1: अंदर रहकर हमारा प्रोग्राम सुनते रहें, यही बेहतर होगा।
0: जी बिल्कुल सर, अपने वक्त की मुझे बातें करने का बड़ा शौक है, और आकाशवाणी से मुझे जरिया
1: अच्छा
0: मिला है बातें करने का।
1: ओके बहुत ही अच्छी बात है ये
0: जी
1: तो। इसी तरह से हमसे जुड़ते
0: ईटानगर
1: रहिए और
0: में, जी
1: बातें
0: सर मैं
1: करते
0: बताऊँ
1: रहेंगे।
0: आपको, ईटानगर में हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनता हूँ मैं। हेलो फरमाइश हमारा एक ग्रुप बना हुआ है,
1: जी
0: हेलो फरमाइश एक्टर ग्रुप, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती।
1: तो चलिए कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे।
0: जी सर, फिल्म का नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी, और गाने के बोले बोली वाली लड़की, खोले पे दिल की प्यार वाली खिड़की।
1: जी और किन
0: जी
1: लोगों के साथ सुनना चाहेंगे।
0: जी हमारा ग्रुप है हेलो फरमाइश रेडियो एक्टर ग्रुप, उसके दोस्त है हमारे भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव, गौतम राय बोले, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, और कानपुर से भी पूनम जी।
1: ओके इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को। तो
0: जी
1: प्रेम सिंह जी
0: बिल्कुल, रमेश
1: हमसे
0: टेलर भोपाल से हैं, हमारे दोस्त सुनील झा भोपाल से हैं।
1: ओके तो सुनाते
0: और
1: हैं
0: ये
1: आपको
0: गाना
1: आपके।
0: आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा
1: हाँ जी
0: सर।
1: हाँ जी मैं तो जरूर सुनूंगा ही आप लोगों के साथ। जी
0: जी
1: तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: जी थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात
1: ओके
0: करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी जी

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार योगेश जांगड़े जी।
1: बिल्कुल सही पहचाने,
0: जी
1: योगेश
0: जी जी
1: जांगड़े। भी मैं
0: जी
1: तारा छत्तीसगढ़ से।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे नियमित श्रोता योगेश जांगड़े जी। और कहिए, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: ओके, मौसम तो गर्मी होगी अभी तो।
1: बिल्कुल गर्मी है।
0: जी, तो घर पर ही होंगे अभी?
1: हाँ, घर से ही बात कर रहे हैं। और अभी जब से
0: ओके,
1: गर्मी लगा है, खेती बाड़ी
0: हाँ
1: का कार्य पूर्ण हुआ है, तब से ज्यादातर तो घर में ही रहना होता है।
0: ओके। और सुबह से अभी तक कितने रेडियो स्टेशन पे आपने कॉल किया?
1: ये मेरा 14वां फोन कॉल है आज का, और दिन
0: आज
1: भर में
0: का क्या
1: कम से
0: बात है,
1: कम 32 से 35 कॉल करना है
0: बाप रे बाप रे बाप रे। जी, अगर
1: जी।
0: बाहर जाना ना हो तो घर पर रहकर के कॉल करते रहें और गीत
1: बिल्कुल
0: सुने, जानकारी ले रेडियो से। जी जी
1: जी।
0: हाँ जी, तो कहिए आज क्या गाना सुनना चाहेंगे, कौन सा फिल्म का?
1: तमाम साथियों को आप सुनवा देंगे फिल्म धड़कन से टाइटल सॉन्ग, तुम दिल की धड़कन में रहती
0: धड़कन
1: हो।
0: में रहते हो? जी, बहुत ही प्यारा गीत है।
1: तमाम साथियों के साथ इस गाने में
0: ओके,
1: किसी को नहीं छोड़ेंगे
0: अच्छा।
1: जी।
0: जी, तो योगेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं धड़कन फिल्म का गाना।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे दोस्त राकेश जी।
1: जी जी जी जी।
0: और कहिए कैसे हो आप?
1: जी बहुत बढ़िया है। और आप सुनाइए, आपका ईटानगर का कैसा मौसम?
0: जी हम तो बहुत ही बढ़िया, ईटानगर का मौसम भी बढ़िया है और शिमला का मौसम भी बहुत ही बढ़िया होगा।
1: जी जी शिमला का मौसम भी बढ़िया है और बारिश हो रही है। और
0: अच्छा
1: जी जी जी, बारिश लगातार हो रही है हमारे यहाँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आप प्रॉपर शिमला से ही बोल रहे हैं या फिर कहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं प्रॉपर शिमला से हूँ, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, मैं हिमाचल का साइनस हूँ और मैं सभी केंद्र के साथ आकाशवाणी ईटानगर।
0: अच्छा जी जी। और शिमला में अगर कोई आए तो कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं?
1: शिमला में अगर कोई कोई जाए तो आप जक्कू, माल रोड, ये रिज मैदान, और क्या बोलते रिज मैदान फोटो खींचने का, क्योंकि वो शूटिंग रेंज है वहाँ।
0: अच्छा।
1: शूटिंग होती है फिल्मों की रिज मैदान पे।
0: ओके जी जी, जी
1: और
0: जी।
1: माल रोड आप घूम सकते हैं, और चिड़ियाघर जो है होता है, और कुफरी, कुफरी आपने सुना होगा?
0: हाँ जी हाँ जी, सुना है सुना है।
1: तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं।
0: ओके।
1: और अगर आपको सेब के जो पेड़ होते हैं वो देखने, तो हमारा क्षेत्र है, मेरा गांव तहसील का नाम है कोटखाई।
0: अच्छा, वहाँ
1: तो
0: पे सेब अच्छे
1: आप
0: होते हैं।
1: घूम सकते हैं। तो पूरा जो है शिमला काफी घूमने के लायक है। अगर आप आ सकते हैं शिमला, हिमाचल में पूरा शिमला घूम सकते हैं। कुल्लू मनाली तो आपने सुना होगा।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुना है ये सब जगह।
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी आप आ सकते हैं। शायद आप आए नहीं होंगे ना पहली बार शायद।
0: हिमाचल प्रदेश में गया हूँ लेकिन बहुत सालों पहले, तो
1: अच्छा
0: अभी
1: अच्छा
0: तो काफी नजारा बदल गया होगा।
1: नहीं आप तो नजारा आते, शायद आप शिमला आएंगे पहली पहली जब
0: जी जी
1: आएंगे।
0: जी जी हाँ जी हाँ जी,
1: नहीं तो तब तब का और आपका बहुत फर्क है।
0: बहुत फर्क होगा। जी जी बात तो सही है।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी तब
0: चलिए,
1: तब और आपका बहुत फर्क है।
0: ओके, तो कभी समय मिले तो जरूर आएंगे और देखेंगे कितना
1: बिल्कुल
0: बदल
1: बिल्कुल
0: गया
1: बिल्कुल
0: है
1: आएगा
0: शिमला।
1: शिमला घूमने।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मौसम कौन सा ठीक रहता है वहाँ पे घूमने के लिए?
1: वहाँ का मौसम रहता है मई जून का, क्योंकि जुलाई
0: अच्छा
1: में तो आपदा का खतरा रहता है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होती तो फिर
0: जी जी जी
1: वो
0: जी
1: क्या
0: हाँ जी हाँ
1: बोलते
0: जी।
1: वो नुकसान हो जाता है। तो फिर यहाँ तो जुलाई अगस्त में तो फिर घूमना अवॉइड करना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: अगर आप, अगर अक्टूबर में आना है तो अक्टूबर में भी आ सकते हैं, नवंबर में आ सकते हैं, अगर बर्फ देखना है तो दिसंबर और जनवरी में आ सकते हैं।
0: ओके, क्या बात है क्या बात है जी, सभी लोग तो बर्फ ही देखना चाहते हैं
1: हाँ
0: क्योंकि
1: तो
0: ज्यादातर।
1: जनवरी जनवरी अच्छा मौसम रहेगा बर्फ देखने के लिए घूमने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी राकेश जी,
1: जी
0: काफी
1: जी
0: अच्छी
1: जी
0: जानकारी दी आपने शिमला हिमाचल के बारे में। हमारे जो
1: जी
0: श्रोता
1: जी
0: सुन रहे हैं वो इससे लाभ उठाकर जरूर घूमने आएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, ईटानगर के माध्यम से अगर जानकारी सुननी
0: हाँ जी हाँ जी
1: है
0: हाँ जी जी जी
1: तो जरूर घूमने आएंगे शिमला।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: कहिए आज कौन सा फिल्म गीत आपको सुनाए?
1: आज मुझे फिल्म का नाम है मोहब्बत मूवी का गाना सुना है,
0: और
1: वो नई वाली मोहब्बत।
0: हाँ जी गाने के बोल।
1: उसमें एक गाना है, दिल में इसी रहती है, दिल की धड़कन कहती है।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: तो पूरन वर्मा जयपुर राजस्थान से हैं, और अमर बसमाचार्य हैं, और विमल बसमाचार्य हैं, अविनाश तेली हैं, भगवान सिंह परमार हैं, और मांगी लाल चंदेल हैं, और तमाम सुनने वाले टिपू दास है, तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, तो राकेश जी हमसे जुड़ने

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी।
1: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी, महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया सर,
0: बढ़िया। और मौसम?
1: मौसम तो धूप है सर, 45 डिग्री है।
0: 45 डिग्री? जी जी जी। तो ऐसे में तो बाहर निकलना मुश्किल होगा।
1: मुश्किल है, मुश्किल है।
0: जी, तो अच्छी बात ये होगी कि आप रेडियो सुने, घर पे बैठे रहें।
1: बिल्कुल, रेडियो सुन रहे सर।
0: जी,
1: रेडियो
0: ओके।
1: सुन रहे, रेडियो से अगर काम रहा, कुछ दस्ती वगैरह बन के बाहर जा रहे।
0: ओके ओके ओके। जी जी जी।
1: हाँ, और सर आ रहे सर,
0: ओके, बढ़िया
1: घर
0: बढ़िया।
1: वापस आ रहे। घर में 4 बजे तक हम बाहर नहीं कर रहे सर।
0: अच्छा अच्छा तो दिन भर तो आप काफी स्टेशन सुन सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि सर मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा अच्छा जी, क्या काम
1: हाँ
0: करते थे आप
1: हाँ
0: पहले?
1: मैं मंडी के ऑफिस में काम करता था।
0: ओके। और रिटायर?
1: सर 2024 में रिटायर हुआ।
0: अच्छा, 2024 को।
1: लगातार अब ये फोन में आप आ गया सर, ये आपके जरिए से पूरे देश भर के कार्यक्रम सुन सकते हैं।
0: जी जी जी जी, बहुत ही सुविधा हो गया आजकल
1: बहुत
0: रेडियो
1: अच्छा
0: सुनना।
1: सुविधा होगा सर ये।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: इसलिए
0: तो
1: आपसे हम जुड़ पाए सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़ते रहिए
1: जी जी सर,
0: जी। हमारा कॉल आता है मंडे और थर्सडे को, थर्सडे को भी आप कॉल कर सकते हैं 11 बजे।
1: अच्छी बात है सर।
0: जी।

0: अच्छा कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं
1: ओके बहुत
0: हमारे
1: बहुत
0: खास करके आलोक फरमाश के ये लोग सब लोग लगा रहे हैं आपको कॉल।
1: जी जी जी जी जी जी तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: आज सर मैं एक तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूँ सर।
1: ओके जी जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
0: जी हमारे खास दोस्त है गौतम जी राय बोले, तुकाराम जी जाधव जी है, भगवान सिंह जी है और उदयलाल टेलर जी है, दिलीप पाउजा है और सुनील जा है और सूरज जाधव पैटन के है। अभी ये सभी दोस्तों को सुनना है सर, आपको भी सुनना है सर।
1: जी जी जी जी मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ। तो कॉल जी तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश.
1: हेलो जी, नमस्कार.
0: नमस्कार. हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: जी मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ.
0: श्रीपाल जी, हरियाणा से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हरियाणा का मौसम कैसा है?
1: सर मौसम से काफी अभी जो गर्म है.
0: अच्छा,
1: तेज.
0: ओके.
1: कुछ दिन पहले मतलब बारिश हुई थी, ओले गिरे थे यहाँ पे.
0: अच्छा, बारिश और ओले.
1: हाँ जी.
0: ओके, तो मौसम तो बदलता रहता है, कभी बारिश कभी ओला कभी धूप.
1: हाँ जी बिल्कुल. लेकिन आज जो मतलब गर्मी ज्यादा है.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप तो घर पर ही होंगे?
1: नहीं सर, अभी मतलब ड्यूटी पे दिल्ली में काम करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं.
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, आपने बताया था पहले. ओके ओके.
1: हाँ जी, पहली बात
0: है आपसे. जी जी, तो श्रीपाल जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम कटी पतंग गाना है, जिस गली में तेरा घर ना हो
0: बालमा. जी जर,
1: जी मुकेश जी की आवाज़ में.
0: हाँ जी हाँ जी, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी काफी दोस्त हमारे, योगेश जी हैं, भूपेंद्र जी, गौतम जी हैं, दिलीप आहुजा जी.
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं. तो श्रीपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सुनते हैं आपके पसंद का गाना.

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: मैं दुमाल कलाहली उड़ीसा से मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ।
0: मनोज कुमार पटेल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप, बताइए
1: हम तो ठीक ठाक है जी, और आप कैसे हैं?
0: जी। हमें बहुत ही बढ़िया है, और आपसे बात होती है तो हमें और भी अच्छा लगता है।

0: होती ही है
1: जी जी
0: जी. हमारे यहाँ पे भी कल रात बारिश हुई थी, अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला है.
1: जी जी
0: ओके, तो बहुत ही बढ़िया मौसम में आप हैं, तो
1: जी
0: कहिए बढ़िया मौसम में कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सूर्या मूवीज का एक गाना है, प्यारी प्यार का है मनाया राम ने, कोई आया मेरा दिल थामने.
0: जी जरूर सुनाएंगे. और किन लोगों के साथ सुनना
1: जी
0: चाहेंगे आप?
1: जी मेरा दोस्त है श्रीकांत जोशी और चित्रा सेन जी और मंगेलाल जी.
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहेंगे?
1: जी आपको भी ये गाना डेडिकेट
0: जी जी
1: करना
0: जी
1: चाहता हूँ.
0: मैं तो जरूर सुनूंगा ही आप सभी के साथ.
1: जी.
0: तो मनोज जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं.
1: नमस्कार जी.
0: नमस्कार.

0: हल्लो फरमाइश।
1: I love my Eco because it's got more power.
2: And it also comes with all new safety features.
3: We love our Eco because we can bring all our friends.
1: We love our Eco because it's made every journey special.
4: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
5: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम और इस वक्त आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में 2 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। उससे पहले आपके लिए अब पेश है एक खूबसूरत गीत फिल्म ओम शांति ओम से, के आवाज में गीत अजब सी।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satishan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs and trade tensions high on agenda. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. India today asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the two-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
1: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
0: Dr. S. Jaishankar said recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.
1: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
0: Dr. Jaishankar said today's BRICS meeting provides a platform to exchange perspectives and develop convergences.
1: Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
0: During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. The theme for India's BRICS chairship this year is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Foreign ministers of several countries are participating in BRICS meeting. They include Brazil's Mauro Vieira, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Syed Abbas Araghchi, Indonesia's Sugiono, Dato' Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan from Malaysia, UAE's Khalifa Shaheen Al-Marar, and Ronald Lamola from South Africa, among others. The foreign ministers will also call on Prime Minister Narendra Modi this afternoon. On the second day tomorrow, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. Meanwhile, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Indonesian counterpart, Sugiono, on the sidelines of the meeting this morning. In a social media post, Dr. Jaishankar said they reviewed the progress of the Comprehensive Strategic India-Indonesia Partnership and the cooperation with the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. India and the UAE are set to take their already robust partnership to the next level as Prime Minister Narendra Modi meets UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi tomorrow. The visit comes amid growing high-level engagement between the two countries. The UAE president had visited New Delhi in January this year, his fifth visit to India in the past decade, and the third as president of the UAE. During their meeting earlier this year, the two leaders had reviewed the full scope of their comprehensive strategic partnership and witnessed the exchange of several significant agreements. Among the most consequential was a letter of intent to work towards a formal strategic defense partnership, marking a major step forward in bilateral security ties. Our correspondent has more details.
2: In a major energy partnership, ADNOC Gas and Hindustan Petroleum Corporation Limited signed a 10-year liquefied natural gas supply agreement valued at an estimated $3 billion earlier this year. The UAE and India has also reaffirmed their commitment to expand bilateral trade to $200 billion by 2032, building on the momentum of the comprehensive economic partnership agreement. Both sides further agreed to cooperate on setting up a supercomputing cluster in India. Now let's hear from the Indian ambassador to the UAE, Sri Deepak Mittal.
3: The visit of His Highness Sheikh Mohammed in January, there were identified new areas, advanced areas of technology. We had the visit of His Highness Sheikh Khalid, the Crown Prince of Abu Dhabi, in February for the AI Impact Summit. So the visit of Honorable Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times.
2: The United Arab Emirates is India's second largest export destination, with exports reaching $37 billion. With over 4 million Indians living in the Emirates, the bilateral relationship remains as much as people-to-people story as it is a strategic one. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: India has called the attack on an Indian flagged ship off the coast of Oman yesterday as unacceptable. In a statement, spokesperson of the External Affairs Ministry, Randhir Jaiswal, deplored the fact that commercial shipping and civilian mariners continue to be targeted. He informed that all Indian crew on board are safe and thanked the Omani authorities for rescuing them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next phase of India-Africa collaboration will focus on higher value products and integrated supply chains across sectors such as agriculture, digital infrastructure, healthcare, clean energy, manufacturing and technology. Mr. Goyal was addressing the curtain raiser for the India-Africa Business Dialogue and Exhibition and the India-Africa Forum Summit in New Delhi yesterday. He also expressed confidence that the India-Africa Business Dialogue and Exhibition to be held in New Delhi from the 29th to the 31st of this month alongside the 4th India-Africa Forum Summit will be a success. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home Minister Amit Shah today said India has emerged as a global leader and first responder in the field of disaster management. Mr. Shah said the country has provided global leadership in the field of disaster-resilient infrastructure. He highlighted that 48 countries are now members of the Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure, CDRI, and are working together with India in this direction. Mr. Shah was addressing the gathering after presenting the prestigious President's Colour Award to the National Disaster Response Force, NDRF, at their 8th Battalion campus in Ghaziabad. He said for any force, receiving the President's Colour's honour is a matter of immense pride.
4: The conferment of President's honor upon National Disaster Response Forces is a matter of pride and prestigious for all of us. This recognition honors the collective values of service, courage, valor and dedication displayed by the entire force. Within a short span of less than 20 years, National Disaster Management Authority and NDRF has played a significant role in placing India on the global map in the field of disaster response and rescue operations.
0: Minister of State for Defence Sanjay Seth today described Operation Sindoor as a landmark success that demonstrated India's capability to conduct swift, coordinated operations using indigenous weapons and systems. The minister was addressing the inaugural session of the third edition of Kalam and Kavach in New Delhi.
5: Today's world is changing rapidly. The nature of warfare is evolving. threats are no longer confined to physical borders. They now extend into cyberspace, space, information network, and emerging technologies. In such environment, security demands not only effectiveness, but also foresight. That is why the idea of JAI, given by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji during the latest Commander Conference, jointness, Atmanirbharta, innovation is so important for India's future.
0: The event serves as a premier strategic platform bringing together senior policymakers, military leadership and defense industry stakeholders to deliberate on India's evolving defense transformation and indigenous capability development. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheesan as the new Chief Minister of Kerala. The announcement was made by Congress leaders Ajay Makan, Mukul Vasnik and Deepa Das Munshi during a press conference in New Delhi. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. UDF secured a more than two-thirds majority in the Kerala Assembly elections, but the party was unable to decide its chief ministerial face due to lobbying by different camps and protests by workers at the ground level. The BJP today hit out at the Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, over his foreign visits. Briefing media in New Delhi, BJP spokesperson Sambit Patra said, Mr. Gandhi is in public life for the last 22 years and during the period he has undertaken 54 visits. Mr. Patra alleged that the estimated amount of 60 crore rupees was spent by him personally on his foreign visits. The Tripura government has introduced a series of austerity measures to reduce expenditure and conserve fuel. In a memorandum issued yesterday, the state government directed all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the U.S. to be partners, not rivals. In his opening remarks, U.S. President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The U.S. President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's P.V. Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7th seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता बीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
7: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
6: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
7: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
6: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
8: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
9: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
10: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
9: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
6: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरल विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
11: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
6: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
7: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
6: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा

शताब भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार यानी मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपके लिए पेश है पहला गीत, सनी देओल की गीत यारा ओ यारा, जो एक बहुत भावुक और दोस्ती प्यार वाला गाना है, जिस पर सनी देओल और करिश्मा कपूर दिखाई देते हैं। ये गाना फिल्म जीत का हिस्सा है। इस गाने की खास बातें, इसमें दोस्ती, भरोसा और दिल के रिश्तों की भावना बहुत गहराई से दिखाई गई है। दोस्तों यारा शब्द अपनेपन और सच्चे साथी का एहसास देता है। गाने का संगीत 90s के दौर के रोमांटिक और इमोशनल फील देता है, इसलिए आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। नदीम शोभान का संगीत और मधुर धुन इसे यादगार बनाते हैं। गाने की आवाज में दर्द और प्यार दोनों महसूस होते हैं, जो कुमार शानू, विनोद राठौर और अलका याग्निक ने खूबसूरती से निभाया। तो पेश है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में पहला गीत फिल्म जीत से।

बस आप सुन रहे थे गीत गुज्जर फिल्म से मोहम्मद अजीज और सरना सरगम की आवाज में। दोस्तों, 90s के गाने सीधे दिल पे लगते हैं। अगर 90s की बात करें तो 90s के गीत सिंपल लिरिक्स और गहरे एहसास से जुड़ी हुई होते हैं, ना ज्यादा शोर ना हैवी वर्ड्स। 90s के कलाकारों की आवाजों का मिलन आज भी जिंदा है, जैसे कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति। दोस्तों, ऐसी आवाजें जो टाइम के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और गहरी लगती हैं। जी हाँ, इसी के साथ कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में अब आपके लिए पेश है गीत मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म से। गीत के बोल है चुरा के दिल मेरा और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत बाजीगर फिल्म से। इसी के साथ ही कार्यक्रम हिट्स 90s यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद मिश्री कमान और तयगामती श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: दिस इज अपू गपक। टुडेज हेडलाइंस आर The two-day meeting of BRICS foreign ministers underway in New Delhi. The meeting is being chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. The team for India's BRICS chairship this year is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Union Home Minister Amit Shah says, National Disaster Response Force, NDRF, has earned the trust of 140 crore.

नाही, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़। मीडियम वेव सिपा सिसपसी चमसी मीटर उपा चिसेभा किलो हस में मुचला खामताई खामती हो को मा हो मनेवन किसबदे लानी पीटई सोहिंग बा साउ तो इंगनाजी पीम सोहिंग साउ हो नन मे ने सिपसी वन नम हो वती कुन सिंग कुन मंग तंगलाय मो सोप नम खा मने ह नै थोम खाता ब्रिक्स मीटिंग हंग सोंग वन नै मंग इंडिया हाउ हिट होस सु केन मंग न्यू दिल्ली माई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मंचो को मीटिंग में खौनंग नम हो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर खनसम हेड ऑफ डेलीगेशन लोक मेंबर खनसम पार्टनर कंट्रीज ने खौ को खौनंग यू हो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सेरेमनी अन खोंग नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एन डी आर एफ मई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वन मनई मई कखौ नंग कन्मा नियाती गाजियाबाद मई दखा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू वन मंगा मई फेस वन अन डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू एक्सरसाइज मई औसी मीटिंग अन तक तंग कनका चाहंग चेला मल कमले लोवर सियांग पाके के संग रिपा राधा सी योमी के ई पन्योर खनसम बीचोम नई खाऊ मीटिंग नई मिस्टर खांडू सोशल मीडिया मई पोस्ट कन हमा वन मंगा मई मिनिस्टर कनलेम ट्रांसपोर्ट ओजिंग तासिंग अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस खनसम रेड बस मई औसी एम ओ यू अन्न हिट साइन मा इ टिकेटिंग सर्विस टिको लोक हनै टेप टिकेट नै लो इ टिकेटिंग मई को टेप औ पीन निसी लौखै कन मा नम हो मान फर्मे न रुंगला सर्कल मई मंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम अन्नंग तक तंका नु आत्मनिर्भर भावनी योजना खनसम प्रैक्टिकल कल्टीवेशन टेक्निक फक हिट हिचु विस्टर एंड सीटेक माई औसी नु होसिप को कौन हिट है हिट ना नै खौ प्रोग्राम मै खौ नंग कन मा मंगा लोक डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जॉइंट इंस्पेक्शन अन्न तक पुट हो का नु चाइल्ड लेबर खनसम फोर्स लेबर मई अमु मई पुलिस डिपार्टमेंट खनसम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चेला इसियांग को खौ कन का इंस्पेक्शन नई न चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट मई चोम सी तक तंग का एस डी ओ संजय तरम कुन सिंह मंग खाउ मई वा खेन सी लोकलान पचौ मई मऊ हिट अमु खनसम अमु अन टिपा चिपा सेप नई खाउ लोक युर्दी राबे सबसी वाई आर एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चेला वेस्ट यांग डिस्ट्रिक्ट मई नम अन मोहन हन हेक्चु मक्स डियर कैमरा मई तक तो कनका खनसम चाहा मने को खाम तुखै ने नम हो मने मुई खाम मई लोकनांग चिनवा मानचे मै हने थोम तखा

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और कार्यक्रम में आपके लिए पेश है गीत कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से। गीत के बोल है उप थेरी अदा और इस गीत को आवाज दी है अलीसा मेंदोंसा और शंकर महादेवन ने।

0: दोस्तों सुनते हैं कि नीरज श्रीधर की आवाज में फिल्म बिल्डर से आपको बता दूं कि इसके साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि मेले में निबन आली तारे बृहस्पतिवार इपोहांसों आजम्बाजी पुनी मिनट मुझे कपिशम के वांचो साय का पां कपई पवां कहो पहाई पाले वांग का वांग सुए इंडिया आपुतों लनी अनि हन पंग मासो अपो अंकिया ब्रिक्स होतम डेज पो फॉरेन मिनिस्टर थम मीटिंग तुसो न्यू दिल्ली मा अनि मकंग हो वांगले हजा तुसो आखो अंग इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अंग तैले बोमा डॉक्टर जयशंकर तुसो होका डब जंगवन मा चावनु तु जिंग जौ ले थंपकु मा तु मैलम खौ पीस हियर सिक्योरिटी आचों के होली अंग ए सेट तया ले बन क्या बो मा चावनु मा चोन चोन ले गाय दों क्या होचा औ जान हे तु म वांची ए हाले क्या तोय तै जिंग जौ ले अमै पुकु मा काजु जंग जोई डायलॉग हियर डिप्लोमेसी ओबिल ले खत खा के होली हे हया गाय ले आहो दवा ले वन ले काउ मा अजंग बा हजा तु सो मा ब्रिक्स डेस फॉर फॉरेन मिनिस्टर थम बो मा ब्रिक्स डेस फॉर होशम हो कोई डेस फॉर तो कंग हाई डोंग क्या डेलीगेशन हो थम फो हकले तैले बो मा आजा के संग पुंग मा हजा इंडियास ब्रिक्स चेयरशिप तु सो थेम अंग बिल्डिंग फॉर रिसाइलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ले थम तैले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF तो हम जिंगजाऊ क्या जंग पोंसा बामा वही देश अंक क्या होता पुनी कु ती खनक नु जो मंग ओंग ताईना बोमा देश मा तजोंग तजोंग मा चु तलक क्या डिसास्टर तो ताई है डोंग पुजु मा हाजतो सो ओपोंग अंग NDRF थम है ना यंचंग मा खनक नु ए मंग सम जगदन कपहम तया ले वन ले मिस्टर शाह हजा का मनी गाजियाबाद होनुई मा NDRF थम अंग प्रेसिडेंट स्कॉलर एवर्ड प्राइज को अंग अंगोट आसो क्या ताम सेरेमोनी तू सो मा वन क्या जंगवन काजे मा वनले बोमची ए प्रेसिडेंट स्कॉलर्स एवर्ड कपलो क्या ओवर टू फोर सो थम जोंग मता आचों क्या जो मोंगम गांधन का चंगदेपू ले चू वनले अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए मनी होवांग थम अंगपा डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू एक्सरसाइज टू सो आसो अपोले बोमा घोंटा आली हन पकमा यो मुनो जांगवन क्या हजा टू सो मा आजनले कामजिंग तन कमले लोअर सियांग पाके केसांग लेपरेडा सी योमी कई पनियोर हिया बिचोम डिस्ट्रिक्ट फो होमोखोसत हिया होठो होलन पक पंगनु अथुताजांग ले यो टिकटोले खांडू अजब मा सोशल मीडिया पोस्ट का हो मा हजा मीटिंग बा मा वन क्या का हो मा हजा तू सो मा हजा डिस्ट्रिक्ट फो MLAs डीसी हिया डिपार्टमेंट फो अखो के मिथम फै मैन पावर गैप्स डिपार्टमेंट फो मा तैनंग तैक्या मोर सट वैकेंसीज हिया एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर निंग क्या मो पंगनु वनजे दवा मो महाल क्या डिस्ट्रिक्ट वॉइस रिव्यू एक्सरसाइज टू सो स्टेट में क्या पंगनु डिस्ट्रिक्ट जो उअ ओम ले होथम आगा मा अंगोटा सो अंके चंग तैपुले वल्ले अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस APSTS होथम ए स्टेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी घोड़ा फो होहा मोते फन तमताई ले आजन जाए ले अमय अंग आजों मों के लम मा मनी ई टिकेटिंग सर्विस मोथो हो वंग वंग पुकु मा रेड बस होथम फैता MOU का फन लाइंग तो टिपिंग लाइ जाडो कहो मा आजं भाजा का फन लाइंग तो स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग जु हकले आसो अपोकेटा तू सो मा टिपिंग लाइ जाले तावंग डिस्ट्रिक्ट लुंगला सर्कल मक्या फार्मे नोक मा मनी खनकनु अंग आत्मनिर्भर बागवानी योजना स्कीम होमोकोसत बाम अपो अनोलको क्या बो मा ओइस्टर हिया सीटेक मशरूम सोई अंग सा क्या होली हापो अलाई अदन अंग क्या होमोकोसत ट्रेनिंग अपो अनोलको ओतोन अंग ता ट्रेनिंग प्रोग्राम अंगोट असोले कहो मा अजंग बाजा मशरूम मानजाई ट्रेनिंग मा रीजन मके तबिजो जामुत मानजाई मिथम हाका हाइले बगले बोमा प्रोग्राम मा होहुहु मा हुआक आनत SSG hotam tokhang hai kya members tham tokhang athat kole mi hak buzam taku jo manjai mi tham haka haile Eastern district labor department police department here district administration hotam pho mani nausam sashi labor motor sat ma tamdan kya child labor here asanga se labor motor sat amok asat kya force labor aba azak ang azong among kya zu ma ruksin circle mke zaita sa au sa ete kya honoi pho to child labor prohibition and regulation act contract labor act here interstate migrant workmen act walam to le ta joint inspection song le haja ma sdo headquarter sanjay taram e tali chu labor motor sat ma nausam sa shi tatam tadano bo ma halakya walam machasu holi mokasa le bangya meeting ma child labor act walam to le sak le jo legal action lam kya he ol public khanak mu janasai le zangwan ka zele bo ma chi e sai sai to khang hai dong kya migrant worker labor mon mi sat mi tham e chu mama rights ba ma singwan angkya mot bo ma halakya rights walam janglen ma haya ba make ka ang report chona khai le bai honoi police ba labor helpline to koton ham hai ola chu van le ka ho ibai
0: dosto bhi aap sun rahe the wancho shadao ka samachar wancho shadao ka karyakram aap aage aur bhi sun sakte hain hamare media web channel 444.4 meter yani 675 kilohertz tatha drm 666 kHz पर अब आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात

दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम। और फिल्मी गानों के कार्यक्रम में आपके लिए पेश है पहला गीत है दबंग फिल्म से। गीत के बोल है चोरी कियारे और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: दोस्तों अब चलिए फिल्मी गानों से थोड़ी ब्रेक लेते हुए अब आपके लिए प्रस्तुत है ये तो इसमें शताब का समाचार।
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब पेश है ईद उमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐसा आकाशवाणी ईटानगर चुआला पुची जिहलुपी बुरुलिनी एतानीची ईद उमिश्मी आहोला के जे दरगालम्बो यता नता आतिका एमम्मा ऐसा हों खो नवांगा आखावे ऐदोने आतिबुए खोमे जो अच्छियां तो दाने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर में ओना मैं दिल्ली माने अन्य निगे बने ब्रिक्स मीटिंग जिने पंग बम हो लगाने ऐसा हो अंतोगांधे का चाहे चिचा गए ने लाइन वो अरुण दगादा लगादा आहोगा आ मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर अच्छी माचे फॉरेन मिनिस्टर नंबर दो ने किसा रहा डेलीगेट हिमोल नंबर में इंबेगा मुदा आहोगा लेबाचा अन्य हो नुमा एनडीआरएफ में अच्छा चा रुगा मिगे मा अतिकाची मु प्रांबा ने अरुआ तगादा ने होम मिनिस्टर अमित शाह में उत्तर प्रदेश माचे गाजियाबाद अतिकों ने एनडीआरएफ में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड गागा दू मा चिचा गो महोल लगाने मैंडो में आची थुमा में अतिका काजियामा रूमी आदुगिया गा मामाची इमु में एनडीआरएफ चपहिया नंबर अथयोगा दा लाइबदा आहोगा एनडीआरएफ में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड चिगा बचा है प्रणबुदा ने सामे लगाने अचचा रुगा मिगे महो एनडीआरएफ एसडीआरएफ पंचायत एनसीसी एनएसएस तो ने इकिशा वॉलेंटियर इमोल नंबर में फंबू के बने जगह में प्राथुचिता लाए बदा आहोगा चीफ मिनिस्टर पे मखंडु में मई डिस्ट्रिक्ट अजितिला कामले लोअर सियांग पाके के संग ले पड़ा सीयोमी के ई पने और तो ने बिचोम डिस्ट्रिक्ट मामा मेनो छिगे ने आ डिस्ट्रिक्ट मामा जोया इमु काजी अरुंदावे डिपार्टमेंट मा इमु जोया पोस्ट पो काजी के खगा आई तो ने ओ काजी का अरुंदावे चिपो अथुसु देदा आहोगा चीफ मिनिस्टर में डिस्ट्रिक्ट मामा ची दिशी तो ने किसा डिपार्टमेंट आजाहे तालंबो को चिचा देने किसा डिस्ट्रिक्ट एम माबु अब अलिया थुसु है लगादा आहोगा ऑनलाइन माने बस टिकट अमय उचिपो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस ने रेड बस लगा कंपनी में बुनिए एम ओयो अंबवा तिगा बदा आहोगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग एकानोता ने अली अंबवा तेपो मेनो छिया के बने तांदो प्राम बौषदा ला होगा आचू आनंदोगा ने लेबर जो ही या है चाइल्ड लेबर एक्ट आचू को कुमा ने आनंदोगा उदा ने इस यंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ला तेगा बता होगा चाइल्ड लेबर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट आचू दो ने इकिशा लेबर आनंदो आरोगा कानून आचू चिपुआ लेबर आनंदो लाजिक वचा प्रोग्राम अखगा एस डी ओ हेडक्वार्टर संजय ताराम में चिचा बने आलम्बोगा ने लेबर जो है चिम ना लगाने लेबर आलम्बो में एन अच्छे चिवे राइट चिपो आशा ही ना लाए पता होगा जो गो पाऊ हगा मी ऐ तो ने एक रूमी अजी बुआ हो मन ना पुलिस गाला के तो जी ना ने ताराम में लेबर आलम्बो को लाओ पता होगा बुनी तवांग डिस्ट्रिक्ट लोंगला सर्कल मचे फार्मे अतिको ने तुरु आजीवे अन्नाबी मोदो ने मुस्लिम अकुनु अपिते उचिपुआ ट्रेनिंग आहिगा मा तारहुआलु अपिते अमु में आहितो बदा आहोगा साइंटिफिक अचुमा ने अपिते उचिपुआ

0: training ahiga ma yung self help group anambro bu ki wa bada la ho ga research atu sya ma west yang district ma je wildlife sanctuary ma camera akha ga ne manzo mai do ne ekisha america tan do iga sutiga bacha he pamba bu da ne deputy chief minister tournament me lagata aho ga etanchi it miss me aho ali ma on dabai
1: echa आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाली ईद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतन हेंदो
2: अनि मेना चे चाशे छि अहजे
3: दोस्तों भी आप सुन रहे थे ईद मिसमी श्रोताओं का समाचार। ईद मिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के रन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

बस अब चलिए फिर मैं गानों को जारी रखते हुए आपके लिए पेश है गीत है बेबी फिल्म से। आपको बता दूं कि समाचारों के बाद हम आपके लिए पेश कर रहे हैं फिर से फिल्मी गाने और पेश है गीत मेरी दुनिया जिसे गाया है सोनू निगम, समीर अंजान, शान और शंकर ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत अंग्रेजी मीडियम फिल्म से, और अब आपके लिए पेश है गीत सैयारा फिल्म से। गीत के बोल है तुम हो तो, और इस गीत का आवाज दी है हंसिका पारेख, राजशेखर और विशाल मिश्रा ने।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारी दूसरे प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अब से कुछ पलों में आप सुन पाएंगे तंग सहिष्णुताओं का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे साजिद जी। दोस्तों हमारे इस दूसरे प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह

आकाशवाणी ईटानगर डिब्रीगढ़ मछौसा डुबार रंगबलाई मेजिलिंग रंगसाबलाई तारीख पांग हजन निरा खकर पांग आरो मछौरंगजा चुंगलांग रो क्वांग कोनका मामाइर ब्राजील मुंग नई रासिया मुंगरा इंडिया चाइना परम साउथ अफ्रीका BRICS ब्रिक्स मुंगतामंग फॉरेन मिनिस्टर सिंह सगनांग नांगमुंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर प अरहंग कयांगरो मछौसा मसो सनई राम न्यू दिल्ली नंग कथुंगर मीटिंग नंग जयशंकर मसो फानबाई थ प्रजु मुंगकांग म हांति ने सिक्योरिटी प अरिंग रार मोरोक त परम मचौहै मुंकांग नंग नरी हमर तंगा नंग रफानचेन रोरे ओनुति तयंग रक्षिंगो फान द इर ब्रिक्स मीटिंग नंग ब्रिक्स मुंगतामंग फॉरेन मिनिस्टर्स हेंग नई ब्रिक्स मुंगतामंग वालंग हेंग कचूरंगो फान द मचौला ब्रिक्स मीटिंग प बिल्डिंग्स फॉर रिसिलेंट नई इनोवेशन रा कोऑपरेशन नई सस्टेनेबिलिटी ताम मंग नंग तथुंगर कचाई पांखु तुंकांग नंग नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF वनर मुंग वंग कुटी रचासीरा लाब बलयों खाक महियंग रवु प लाप्तु मोरो आशुंग सुरक्रिवंग होम मिनिस्टर अमित शाह मछौसा गाजियाबाद हानंग नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स वनम प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी तथुंग नंग मसौ फानबाई तो प्रजु फान द मिस्टर सारंगो मुंगवांग खाम मुंगनांग खाम लेमरो नै हुंहा खिखेद्रौरा परम हा बैरोरे हानर परजु नै परम सबसे सरा कयांग नाम आछि परजु नेशनल डिसास्टर रेस्पोंस फोर्स NDRF सिपाही प थौरनांग मै हेंग्र रवु प थयुंग रंगो फान्द सिपाही र प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प लाब्रोरे जन प नरी धुर मो अमित शाह र फान्द अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र मनैसा डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू एक्सरसाइज फेस वन मीटिंग तथुंग तनांग आन्या कामले डिस्ट्रिक्ट नंग नई आन्या लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट नंगरा पाके किसांग लेपारादा सी योमी केई पन्योर डिस्ट्रिक्ट नई परम आन्या बीशम डिस्ट्रिक्ट ताम नंग कामवांग सोम र कमुंग नंग रफान्त मिस्टर खांडू र मीटिंग नंग रफान्त मान प सोशल मीडिया नंग कुत प्रजु मो पन्र मीटिंग नंग मेन पावर गैप्स मान नई डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज ताम मान रा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रजु सोरक्री काम प अहम सोम का मंगोर डिस्ट्रिक्ट ताम कचुपाई रंग मान नई प्रजु सिंगमुंग मईम अहम काम सोम कुम ताम कमुंग नंग अरिंग सताइर रफान्त मोरो परिजो चीफ मिनिस्टर रंगो आपीर एमले वालंग हेंग जामनाई डिप्यूटी कमिश्नर सेंग जामरा डिपार्टमेंट ताम वंग आजुंग हेंग जाम अरेंगमन रफान तुमो फान द डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू एक्साइज पर फेस फोर अटक जंगची परिजो अरुणाचल प्रदेश वंग बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट ताम पर होम चिंग ओर द अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस वन रनई रेड बस वन र ई टिकेटिंग सर्विसेस तफांग मंग वरो मनीषा मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU नंग साइन कुरित जमसो अरुणाचल प्रदेश नंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प तहुम अरेंग लमलु जंग रंगो रोक मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंग साइन कुरित प्रजु अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग आतोंग जंग त मिनिस्टर र मीटिंग वांग मान प सोशल मीडिया पोस्ट ना कुत प्रजुंगो नोंग नै तुंग नंग रहोम र इर र मै कार वांग वन म तचु सी पर म काम वांग फ ट्रांसपेरेंट तयांग सिंग रो त प्रजु नोंग नै र मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंग साइन कुई रो अरुणाचल प्रदेश प डिजिटल काम सहेंग सिंगो फान त लेबर डिपार्टमेंट नई पुलिस डिपार्टमेंट रा परजु ईस्यांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताम कचुरो रे चाइल्ड लेबर प तंगम नई फोर्स लेबर प तंगम तान रो मनीषा ज्वाइंट इंस्पेक्शन कुरित इर डिपार्टमेंट ताम रो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कानून नई
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कानून रा पर जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वॉकमैन एक्ट कानून ताम जखुम रोक्सिन सर्कल नंग बलि भाई हाथाम नंग इंस्पेक्शन कुरित पर जो एसडीओ पासखात संजय ताराम महियांग मसौ फानबाय तनांग नाउसा म लेबर कम तसोम रंग जामु मरो सिंगमुंग वांग मै मरो त नाउसा मै म कम तसोम चीवन संगनांग चाइल्ड लेबर एक्ट कानून माम एक्शन लामची मरो एसडीओ र तहत पर जो माइग्रेंट वर्कर्स कम सोमन र पन राइट्स प तगरंग रा र आरो बाउंडेड लेबर तयंग रजु पुलिस मनै लेबर हेल्पलाइन म जालाउ रिपोर्ट कुरंग मोरो डॉग एसडीओ र फान्द चाइल्ड राइट्स प ततंग तंग म तनरो इंस्पेक्शन प कुरित रिसर्चर्स मैं र वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट नंग योडी राबे सुबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोंगवांग मार्क्स डियर मोर नेसिंग किहोय ngam सलाप कैमरा नंग अफंग लक तोलाप खाम ऑनिशल प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउनामेन रंतुत और ईस्टर्न हिमालयस नंग कंजर्वेशन नई साइंटिफिक रिसर्च पर तयंग द अरंग अरेंग रारुंगो डिप्टी चीफ मिनिस्टर फांत रुंगलांग इतना थुमरा

हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। अभी आप सुन रहे थे तांसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपके अपने आरजे तंपक के साथ और आपके सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साजिद इकबाल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे हंसने के फायदे के बारे में। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जी हां, यह सच भी है। हंसी हमारे शरीर को रिबूट करने का एक शक्तिशाली औषधि है। हंसी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, मूड को बेहतर बनाती है, दर्द को कम करती है और आपको तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। एक अच्छी हंसी आपके शरीर और मन को रिलैक्स करती है और हर तरह के बोझ को हल्का करती है।

तू बहुर खड़ेला जा जा जवानी कब से बना रही है।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जहां हम बात कर रहे हैं हंसने के फायदे के बारे में। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक जब हम हंसते हैं तो यह स्ट्रेस हार्मोन के असर को कम करता है, जिससे मानसिक राहत मिलने के साथ साथ मसल्स को भी रिलैक्स करने का काम करता है। जब आप खुलकर हंसते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन जैसे केमिकल का प्रोडक्शन करता है, जिससे आप खुशी का अनुभव करते हैं। जब आप अंदर से खुलकर हंसते हैं तो यह आपकी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। यह एंटीबॉडी और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं।
1: मारू के नए वीडियोस के लिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, शोध में पाया गया है कि जो लोग खूब हंसते हैं उनमें दिल से जुड़ी बीमारियों के होने की संभावना कम पाई जाती है। इससे यह साबित होता है कि नियमित रूप से हंसना दिल की सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिस्क को कम करता है। दोस्तों, जब हम हंसते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा का प्रवाह तेजी से होता है, जिससे हृदय, फेफड़ों और मांसपेशियों में उत्तेजना होती है और आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन यानी के खुशी का हार्मोन रिलीज होता है। अगर आप 10 से 15 मिनट रोज हंसते हैं तो करीब 40 कैलोरी बर्न होती है। इस तरह आप अगर अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो खूब हंस भी सकते हैं। दोस्तों, गुस्से को झट से कम करने का सबसे तेज तरीका है हंसी। जी हाँ, हंसी जितनी तेजी से गुस्से के प्रभाव को कम करती है उतनी तेजी से कोई और नहीं कर सकता।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इंग्लिश न्यूज़ और फिर नुक्ते श्रोताओं का समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयार। स्पेयरहेड गनर्स द्वारा कल सीमा आरोग्य अभियान हीलिंग एट द लास्ट माइल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के सिंगा गांव में भारतीय सेना का प्रथम IW हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा और रेडबस ने ई टिकटिंग सेवाओं की शुरुआत के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला स्थित योर्द राबे सुबसे YRS वन्यजीव अभयारण्य में कस्तूरी मृग मोस्कस स्पीसीज की पहली कैमरा ट्रैप तस्वीर रिकॉर्ड की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीजिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदारी देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों की उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराखची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे

0: ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: स्पेयरहेड गनर्स द्वारा कल सीमा आरोग्य अभियान हीलिंग एट द लास्ट माइल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के सिंगा गांव में भारतीय सेना का प्रथम आईडब्ल्यू हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचना था, जहां तूतिंग से आगे आज भी बुनियादी चिकित्सा एवं नागरिक सुविधाएं लगभग उपलब्ध नहीं है। इस मानवीय पहल के अंतर्गत भारतीय सेना ने अपर सियांग जिले के जनजातीय समुदायों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सकीय जागरूकता पहुंचाए, जिससे अत्यंत दूरस्त एवं अलग थलग क्षेत्रों में निवास करने वाले सीमावर्ती नागरिकों के कल्याण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता पुनः प्रदर्शित की गई। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा और रेडबस ने बुधवार को ई टिकटिंग सेवाओं की शुरुआत के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जो अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस एमओयू पर परिवहन मंत्री औजिंगता सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। बैठक का विवरण साझा करते हुए मंत्री ने कहा है कि यह सहयोग यात्रा को अधिक सुगम, कुशल और यात्रियों के अनुकूल बनाने के साथ साथ सेवा वितरण में पारदर्शिता और पहुंच की सुगमता को भी मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि इस एमओयू पर हस्ताक्षर करना स्मार्ट शासन की दिशा में एक और स्मार्ट डिजिटल रूप से सशक्त अरुणाचल प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला स्थित योद राबे सुबसे वायरस वन्यजीव अभयारण्य में कस्तूरी मृग म्यूकस स्पीसीज की पहली कैमरा ट्रैप तस्वीर रिकॉर्ड की गई। वन्यजीव विरासत को रिकॉर्ड करने और उसकी रक्षा करने में शामिल शोधकर्ता, वन अधिकारियों और सभी संबंधित पक्षों के समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस खोज को अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों वाले जंगलों की समृद्ध जैव विविधता का एक प्रमाण बताया है। उन्होंने जोर दिया है कि ईस्टर्न हिमालय और वन्यजीवों के निरंतर संरक्षण और वैज्ञानिक शोध का कार्य जारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात भी करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
2: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की उपलब्धि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रीय ध्वज समारोह में कहा है कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
4: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
5: ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज राजधानी चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता दोस्तों, लीजिए अब पेश है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नुक्ते श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

100 अंधेरों में भी रोशन हो, उस हकीकत की तलाश है। तेरी दहलीज पे छोड़ा है, उस मोहब्बत की तलाश है। झुकने की इबादत को तो समझे जहां वाले, कटने पे जो हासिल हो उस जन्नत की तलाश है।

नहीं, बात करना उसके बारे में कुछ नहीं। हमारा आधा लाइफ निकल गया उसका पीछा करते करते। बर्फी नहीं होता ना तो हम आज पुलिस से एसपी बन के रिटायर करता। अभी हम होम्योपैथी की पूड़ी बेचता है। होम्योपैथी

0: जगह बहुत प्यार बढ़ता था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। तभी तो उसके इतने जाने वाले थे।
1: बचपन का यार था मेरा, मुंह का पेच लड़ाया करते थे हम। वो गूंगा बहरा था लेकिन बहुत अकड़ू था। उसका साथ एक प्रॉब्लम था, वो सोचते लोग उसके छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए हमेशा दोस्ती का परीक्षा लेता था।

0: रहते
1: जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। दोस्तों, शाम का वक्त बड़ा अजीब होता है, कुछ लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है तो कुछ के लिए किसी की यादें। किसी की बालकनी में चाय की खुशबू और वो पुरानी पन्नों के वो खूबसूरत लम्हे,

जी दोस्तों, कुछ गानों के सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते हैं, सीधे दिल में उतर जाते हैं। और ऐसा ही एक गाना है हुस्न। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, एक एहसास है अधूरी मोहब्बत का, उन बातों का जो कभी कहीं नहीं गई। अनुव जैन की आवाज में एक अलग ही सुकून है, जैसे कोई आपकी कहानी को धुन में बदल कर गा रहा हो। और हुस्न सुनते वक्त शायद हर किसी को कोई ना कोई याद जरूर आ जाता है।

स्टार्स पे। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। कहते हैं इश्क जब लफ्जों से आगे बढ़कर एहसास बन जाए तो उसकी मिठास कुछ ऐसी होती है जैसे कोई पुराने शायरी या बारिश में भीगी हुई कोई प्यारी सी धुन। और अब जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें है प्यार की मासूमियत, इंतजार की हल्की सी बेचैनी और दिल की वो खूबसूरत तड़प जिसे सिर्फ मोहब्बत ही समझ सकती है। बैरी पिया एक ऐसा नगमा है जो हर बार सुनने पर दिल को उसी पुराने खूबसूरत एहसास में ले जाता है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

真的。

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आदि श्रोताओं का समाचार।

जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। आज के कलाकार में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सिंगर हरी हरन के बारे में। 3 अप्रैल 1955 के दिन केरल के त्रिवनपुरम में जन्मे हरिहरन और संगीत का साथ चोली दामन जैसा रहा। दरअसल हरिहरन को बचपन से ही संगीत की घुट्टी

क्योंकि उनकी माँ अलामेलू मशहूर कन्नड़ गायिका थीं। वहीं पिता अनंत सुब्रमण्य भी शास्त्रीय संगीत के जानकार थे। ऐसे में हरिहरन की संगीत की शिक्षा बचपन से ही शुरू हो गई थी।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं हरी हरन के बारे में। बता दें कि हरी हरन ने माटुंगा के डॉन बॉस्को में 12वीं तक की पढ़ाई की, इसके बाद मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। हरिहरन को असली मंच सिंगिंग शो ऑल इंडिया सुर सिंगार कॉम्पिटिशन से मिला, जहाँ उन्होंने साल 1977 में यह कंपटीशन जीता था, जिसके बाद वह मशहूर हो गए। इस शो के दौरान दिवंगत म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव ने उनकी सुरीली आवाज सुनी और उन्हें बतौर सिंगर साइन किया। इसके बाद हरिहरन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 के दौरान हरिहरन ने लेस्ले लुइस के साथ दो मेंबर का बैंड बनाया। इस बैंड को कॉलोनियल कंस नाम से भी जाना जाता है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं हरी हरन के बारे में। गौरतलब है कि हरी हरन और लिस्ले लुईस की जोड़ी ने कई भाषाओं में बेहतरीन म्यूजिक दिया। इसके अलावा उन्होंने AR रहमान, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मेहंदी हसन के साथ जोड़ी बनाई। बता दें कि हरिहरन को ट्रैवलिंग और किताबें पढ़ना काफी पसंद है। इसके अलावा उन्होंने साउथ इंडियन और इटालियन खाना भी काफी भाता है। हरिहरन की तरह उनके बच्चे भी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। वह अपने बेटे अक्षय हरिहरन और बेटी लवनिया हरिहरन के साथ भी जुगलबंदी कर चुके हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रोन FM 103.1 MHz पे। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के एक कलाकार। अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार।
1: सी आकाशवाणी इथानर पोकुमा लिचिर पोलग अलो लोरीगला लुइपनन है उरुंग कनबाजे रेम थानमलेम अलमेन सुरुंग निसी अहम आर मोलंजी ग्रेम तानगद ताचोब सुरुंग निसी पुयम तापा चोरे जबजरंसी नरम आकम रिपु बाबला ब्रिश ग फॉरेन मिनिस्टर गद ग अलो लोनी गो बखबा दोग सा भारत दोग ला सिलोग लोक नितन दिल्ली लो तोरप के कुवा ओक सिकने कबा हम भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ये अभी गलो व दोग दाग पुकुने में ओक चिगो दोगो लो युमचुम अले बला अलवे चतुर मेंटर ला सिग दाग दब रिदकुने हमला सोक कबा दोकुम लो जब कोक नाव जब को लाइटन एफएम मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ये जब को नमक हेल्प

जी दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुणा FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में भले ही दूर चले जाएं, लेकिन उनका ख्याल कभी दूर नहीं जाता। हर छोटी बात में, हर खामोशी में बस वही नाम, वही एहसास साथ रहता है। और अब जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो उसी एहसास की कहानी है, जहां मोहब्बत शब्दों में नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनों में सुनाई देती है। तेरा ख्याल, एक ऐसा गाना जो आपको किसी खास की यादों में ले जाएगा, शायद किसी अधूरी बात तक या किसी खूबसूरत पल तक, जिसे दिल आज भी संभाल कर बैठा है। तो इस प्यारे से शाम में अपने जज्बातों को थोड़ा दीजिए वक्त और महसूस कीजिए इस खूबसूरत नगमे को।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रोन FM 103.1 MHz पे, और मैं हूँ आपका दोस्त साजिद। दोस्तों, कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि इंसान अपने दर्द को भी मुस्कुरा कर जी लेता है। दिल टूटता है, आंखें नम होती हैं, लेकिन मोहब्बत फिर भी कम नहीं होती, और ऐसे ही जज्बातों को आवाज देता है फिल्म बागी 4 का दिल छू लेने वाला गाना मर जाना। ये सिर्फ एक गीत नहीं, टूटे दिल की कहानी है, अधूरी मोहब्बत की निशानी है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शोर से नहीं, एहसासों से बनते हैं। जहाँ प्यार धीरे धीरे दिल में उतरता है, बिल्कुल किसी खूबसूरत नज्म की तरह, और जब मोहब्बत को शब्दों में पिरोया जाए तो वो बन जाती है प्यारी सी धुन, नज्म नज्म। फिल्म बरेली की बर्फी का ये गाना हर उस दिल के लिए है जिसने कभी चुपचाप किसी को चाहा हो, बिना कुछ कहे उसे महसूस किया हो। तो अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए और खो जाइए इस रोमांटिक एहसास में।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल देते हैं। वो खुद तो एक मुस्कुराती हुई हवा की तरह होते हैं, लेकिन जाते जाते ढेर सारी यादें छोड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे साजिद और आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्ती, सपने, मस्ती और जिंदगी को अपने तरीके से जीने का नाम है। बहती हवा सा था वो, फिल्म थ्री इडियट्स का ये गाना हर उस दोस्त को समर्पित है जो आज भी दिल के किसी कोने में मुस्कुरा रहा हो।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुणा FM 103.1 MHz है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत।
1: अरुण FM 103.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत। अपने राज्य के गीतों के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो साथी गैर अतः।

अपना गीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना इदू भाषा में, हमारा लेजेंडरी सिंगर स्वर्गीय बुद्धि लिंगी की आवाज में। ये गीत एक ड्रिंकर का कन्फेशन था। कहते हैं कि दारू ना पीने की खुद से चाहे जितना भी वादा कर ले, पर ये लत ऐसी है, ये आदत ऐसी है कि पी ही लेता है। तो श्रोता, कन्फेशन से भरा इस गीत के बाद चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे दुनिया की हर माताओं को। प्यारी माताओं, बस आप खुश रहें और लंबे वक्त तक हमारे साथ, आपके अपनों के साथ रहें।

ये गालो गीत था जिसे मिस केम्बकम के और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के लिए बनाया था। गीत लिखा था गतो ओरी ने, कंपोज किया मीबी न्योदु तारिन ने और आवाज थी मिस पंगम लोम्ब की।

बान्यम पोंगलाहम और पेवो पोंगलाहम की आवाज में आप सुन रहे थे वांचो गीत। हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आदि भाषा में आलो लिबांग की आवाज में, जिसमें गायक एक लड़की की घमंड को तोड़ने की कोशिश में कहते हैं कि जवानी भी एक फूल की तरह है, एक बार खिलकर खत्म हो जाती है। खूबसूरत तुम ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और है जो तुम्हारी तरह खूबसूरत है।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम लेकर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत हर शुक्रवार से शनिवार रात 8 बजे। जी हाँ, आप ही का अपना चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए, वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक के समापन का। जाते जाते छोड़ जाती हूँ आप सभी श्रोताओं के लिए ये निशी गीत बिंग्या तब और तोको यालम की आवाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।

0: मानवा।
1: रावण से उसकी लंका ही मांग ली।
2: जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपना गीत, ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz से। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जहाँ हम आज के शोर से थोड़ा दूर जाकर यादों की गलियों में चलते हैं और सुनते हैं वो गीत जो कभी रेडियो की जान हुआ करते थे। कहते हैं ना, कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, बस वो हमारे दिल की अलमारी में कहीं रखे रह जाते हैं और जब कभी बजते हैं तो पूरा बचपन, पूरा जमाना आंखों के सामने आ जाता है।

दोस्तों कभी कभी कुछ चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं होते हैं, वो एक एहसास बन जाते हैं जो नजर से शुरू होकर सीधे दिल तक उतर जाते हैं। और अब जिस गीत की हम बात करने जा रहे हैं वो उसी नजाकत, उसी मासूमियत और उसी दीवानगी का खूबसूरत सा इजहार है। ऐ नरगिसे मस्ताना, एक ऐसा सदाबहार नगमा जिसमें प्यार भी है और उस प्यार को देखने वाली आंखों की तारीफ भी। इस गीत की हर धुन जैसे किसी गुलाब की खुशबू जो धीरे धीरे हवा में फैलती है और दिल को महका देती है।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते हैं बल्कि उन्हें महसूस किए जाते हैं, जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी धीरे से दिल पर गिर जाए और अपनी खुशबू छोड़ जाए। और अब जिस गीत की हम बात करने जा रहे हैं वो प्यार की उसी कोमलता और सादगी को बयां करता है, जहां तारीफ भी है इबादत भी जैसे ही लगती है। ऐ फूलों की रानी, ये गीत उस दौर की याद दिलाता है जब मोहब्बत में दिखावा नहीं होता था, सिर्फ सच्चाई होती थी और दिल से निकली हुई बातें होती थी। और जब भी ये नगमा बजता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई फूलों की दुनिया में ले जा रहा हो, जहां हर तरफ सिर्फ खुशबू है और प्यार।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रोन FM 103.1 MHz पे। जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, प्यार में रूठना भी एक अदा होती है और मनाना उससे भी खूबसूरत इबादत। कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी नाराजगियां दिल को और भी करीब ले आती है, क्योंकि जो अपना होता है ना, उससे रूठना भी दिल से होता है। और अब जिस नगमे की हम बात करने जा रहे हैं, उसी मासूम रूठने मनाने की कहानी है, जहां प्यार भी है और शरारत भी। अजी हमसे रूठकर कहां जाइएगा। ये गीत उस दौर की मोहब्बत को जिंदा करता है, जहां इश्क शब्दों से नहीं नजरों से समझा जाता था। तो इसे सुरीली शाम में अगर कोई याद दिल में हल्की सी मुस्कान बनकर आ जाए, तो उसे जाने मत दीजिए।

0: दोस्तों, ये थे आज के भूले बिसरे गीत जो हमेशा दिल को एक नई ताजगी देते हैं। ये पुराने नगमे कभी पुराने नहीं होते, हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आपको बता दें कि आज के प्रसारण सभा में प्रसारित कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक एलताली तथा तकनीकी अभियंता तानातुम। तो दोस्तों, अब से थोड़ी देर में आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित एफएम गोल्ड पर सभी कार्यक्रमों को। तब तक के लिए आप अपने रेडियो दोस्त साजिद इकबाल को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर।
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्री वाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाला है केरला में। ये हर साल हम देते थे, इस साल हमने क्या किया है और एक एआई बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो आईएमडी का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको आईएफएस कहते हैं, आईआईटीएम का ईआरएफ कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और इसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल और सेकंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है और ये बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 यूटी में। और उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत

0: लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं। इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितने भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर पर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ERG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को, प्रणाली को तैयार किया है, और उसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3,196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन का भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसिमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया है, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICAR सेंटर्स हैं, और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD विद अ फोकस देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा, और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाया गया है। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMOWF का है, उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टर के, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है, अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए।

0: एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा है, ARG डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसके एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीश, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है।
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नवकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज जो शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले एक दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है, इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारे जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वो वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फिर उधर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल के फिर उसका गाँव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इनकेस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है ब्लू पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते हैं या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस

0: पर्टिकुलर क्रॉप के लिए किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, जिनके कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं, और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखनी चाहिए, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट के इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाते हैं मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार

करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति चिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुआवजे की स्थिति की जानकारी हर 3 घंटे में देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समर्ग दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल, कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था निर्मित करना। प्रधानमंत्री मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोग को मजबूत करने के लिए सदस्य देशों की उपस्थिति और निरंतर प्रतिबद्धता के प्रति आभार प्रकट किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कई देश ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स के लिए मानवता को प्राथमिकता देने और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जन संबंधों पर आधारित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। एक्सपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले एनर्जी, फिनटेक, न्यूक्लियर और आकाश और अबू धाबी।
0: दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के दोनों नेता इस बात पर सहमति व्यक्त की ऊर्जा का निरंतर सुनिश्चित करें, खुला रहना चाहिए। चीन के श्री जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका प्रतिद्वंदी नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच मतभेदों की तुलना में साझा हित अधिक है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का आह्वान किया। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन कहीं बेहतर हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
3: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: एक कहा गया है कि बैठक में ईरान संघर्ष और अमेरिका में बढ़ते राजनीतिक दबाव की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति 3 दिन की चीन यात्रा पर हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। श्री रूबियो ने कहा कि चीन द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान लगातार ताइवान का मुद्दा उठाता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री लावरोव ने पिछले वर्ष दिसंबर में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति के बारे में श्री मोदी को जानकारी दी। रूस के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का सर्वोत्तम मार्ग बताते हुए भारत के निरंतर रुख को दोहराया। 16 देशों के बहुराष्ट्रीय दल के साथ इंडियन ओशन शिप सागर में के रूप में तैनात भारतीय नौसेना पोत आईएनएस सुनैना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री पहुंच पहल के तहत कल कोलंबो पहुंचने वाली है। इस जहाज को 2 अप्रैल को मुंबई से रवाना किया गया था। इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों के नौसैनिकों के साथ संयुक्त बंदरगाह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में जहाज संचालन, नौवहन, अग्निशमन, क्षति नियंत्रण और समुद्री अवरोधन अभियान शामिल थे। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हुर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैरा बंदरगाह के करीब

इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के कार्यालय ने कहा है कि यमन और हौती आंदोलन 1600 से अधिक कैदियों के आदान प्रदान पर सहमत हो गए हैं। यह यमन संघर्ष से शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी कैदी रिहाई है। हौती 580 कैदियों को रिहा करेगा, इसमें 7 सऊदी और 20 सूडानी नागरिक शामिल हैं। उधर गुजरात में सीनियर चैंपियनशिप में आज अजित नारायण ने कांस्य पदक किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में टीन जर्क और समग्र दोनों हासिल किया।